एपमेंट 100.2 MHz पर यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। आज बुधवार है, शक संबत 1948 के आषाढ़ मास की 24वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 15 जुलाई 2026। प्रातः के 5:56 हुए हैं, आरंभ होती है हमारी प्रातःकालीन सभा।

0: FM 100.2 MHz पर यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। सुबह के 6 बजने को है समाचार दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता CETA आज से लागू हो गया है। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा समझौता, जिसे दोहरा अंशदान समझौता DCC कहा जाता है, भी प्रभावी हो गया है। इससे ब्रिटेन में भारतीय व्यवसायियों की गतिशीलता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बल मिलेगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% टैरिफ लाइनों पर शून्य शुल्क की सुविधा प्राप्त होगी। कल नई दिल्ली में वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि ये समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नए चरण की शुरुआत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत ब्रिटेन CETA और DCC का लागू होना वैश्विक स्तर पर एकीकृत, लचीली और प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: इस समझौते के तहत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कंपोनेंट्स पर लगभग 18%, चमड़े और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तक तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क अब शून्य हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। रोहन के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने कहा है कि वे पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मथेसिय व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। श्री जायसवाल ने कल नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए तनाव कम करना और बातचीत के माध्यम से समाधान निकालना जरूरी है। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये पाकिस्तान की लंबे समय से चली आ रही नीतियों और लोगों के अधिकारों के उल्लंघन का परिणाम है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने की अपील की। भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता का पहला दौर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। ये द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को विस्तार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले वर्ष $771 मिलियन से अधिक का था। उससे पहले वर्ष ये $679 मिलियन था। इसमें 13.5% से अधिक की वृद्धि हुई है। भारत आज से हैदराबाद में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। 2 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, श्रम क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत वर्तमान में 7 स्थानों पर 8.78 GW की कुल क्षमता वाले 24 परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों का संचालन कर रहा है। इसके अलावा 8000 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाली 10 और रिएक्टर इकाइयां निर्माणाधीन है। इनमें दबाव वाले भारी पानी के रिएक्टर, उबलते पानी वाले रिएक्टर और हल्के पानी वाले रिएक्टर

0: शामिल है। देश मुख्य रूप से दबाव वाले भारे पानी का रिएक्टरों को चलाने और परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन का उपयोग कर रहा है। सरकार ने कहा है कि भारत ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और स्वच्छ आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का लगातार विस्तार कर रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने कल रात फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। स्पेन के लिए मिकेल ओयरज़ाबाल ने 22वें मिनट में पेनल्टी पर पहला गोल किया। इसके बाद 58वें मिनट में पेड्रो पोरो ने दूसरा गोल दागा। अब फाइनल में स्पेन का मुकाबला आज अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। वहीं क्रिकेट में कल भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। बर्मिंघम में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए। जवाब में भारत ने 45वें ओवर में 4 विकेट खोकर 262 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम एंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। समय हुआ है भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का। वंदना कार्यक्रम में सुनिएगा ये मातृ वंदना गीत समूह स्वर में।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। अभी आप सुन रहे थे सीमा अनिल सहगल के स्वर में ये भक्ति गीत। आइए अब सुनते हैं रामनाथ पुनकर के स्वर में ये भक्ति गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे रामनाथ बुनकर के स्वर में ये भक्ति गीत। आइए अब सुनते हैं सुधा मल्होत्रा के स्वर में संत कबीरदास की

0: आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सुबह के 6:30 हुए और समय हुआ है चिंतन का। चिंतन में आज आप सुनिए मानवीय मूल्य पर चिंतन डॉक्टर एसपी सारस्वत से।
1: करने की कोशिश करता है। जीवन में हर पल अनेक उदाहरण आपके सामने आते हैं, जब व्यक्ति अतिशयोक्ति पूर्ण शैली में या तो अपने ज्ञान का बखान करता है या किसी की आर्थिक स्थिति का महिमा गान करता है जिसकी बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं है। इसी तरह व्यक्ति अनावश्यक रूप से दैनिक जीवन में असत्य का सहारा लेता है अथवा दिल का ताड़ बनाकर प्रस्तुत करता है जिसका कोई औचित्य नहीं होता। आधुनिक युग में बढ़ते मोबाइल के प्रयोग ने झूठ बोलने की आदत ही डाल दी है। उसकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर दिखाई देता है। ये दोनों ही प्रकार की स्थिति अवांछित है जिससे बचा जा सकता है। कुछ लोग तो रेडीमेड बहाने बनाकर तैयार रखने में बहुत माहिर होते हैं, चाहे वो स्थान कार्यस्थल हो या घर परिवार या इष्ट मित्र हो, इससे उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता।

एवं असत्य कथन के आदि हो जाते हैं। वे समझते हैं कि उनके इस तथा कथित स्मार्टनेस को लोग नहीं समझते, जबकि सत्य ये है कि लंबे समय तक ऐसा करते रहने से उनके व्यक्तित्व व कृतित्व पर अच्छी छाप नहीं पड़ती। यही नहीं, इस दुष्प्रवृत्ति का दूसरों पर बुरा प्रभाव भी पड़ता है। गुड मैनर्स जैसे रचनात्मक दिशा में प्रभावित करते हैं, वैसे ही इल मैनर्स नकारात्मक ऊर्जा का संचार कर नकारात्मकता फैलाते हैं, जो समाज को दुष्प्रभावित करते हैं। अतिशयोक्ति पूर्ण एवं असत्य कथन वाले व्यक्ति इस शैली का प्रयोग दूसरों को प्रभावित करने का असफल

कि बुराई को पनपने से पहले ही रोक दिया जाए। ऐसे व्यक्ति कई बार तो इस बुरी आदत के आरोप में रंगे हाथ पकड़े भी जाते हैं, अर्थात उनका अतिशयोक्तिपूर्ण कथन अथवा असत्य कथन उजागर हो जाता है। ये बड़ी विषम परिस्थिति होती है जिसके लिए वे स्वयं दोषी हैं। ऐसे व्यक्ति कभी विश्वसनीय नहीं रहते तथा अपने इस कृत्य के कारण दूसरों की नजरों में अपना सम्मान भी खो देते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए ये छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में बड़ी बड़ी बातों से ज्यादा महत्व रखती हैं, क्योंकि छोटी छोटी बातें हर पल घटित होती रहती हैं, जबकि बड़ी बड़ी बातों के अवसर जीवन में बहुत कम आते हैं। आवश्यकता है इस अवांछित और अन

अच्छे संस्कार विकसित करने की शिक्षा डालनी चाहिए। कई बार तो प्रत्यक्ष रूप से माँ बाप ही बच्चों को असत्य कथन करने को बढ़ावा देते हैं। प्राथमिक शिक्षा में नैतिक मूल्यों पर बल देने की आवश्यकता है। ये हमारा सबका दायित्व है कि हम अपने चारों ओर एक ऐसे परिवेश का निर्माण करें जहाँ बच्चे संस्कार

प्रीति की सुंदर रीति का अनुपम उदाहरण है दूध और जल का मिलन। दूध में मिलकर जल भी दूध के भाव बिकने लगता है, किंतु कपट रूपी खटाई के पड़ते ही पानी दूध से एक बारगी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है, प्रेम रूपी स्वाद जाता रहता है। सती के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव से आतंकित होकर शिव जी से छिपाव किया और मिथ्या वचन कहे कि उन्होंने श्री राम की कोई परीक्षा नहीं ली, किंतु सर्वज्ञ शंकर ने सब कुछ जान लिया और सती के कपटपूर्ण व्यवहार के लिए उनका त्याग करने का निश्चय कर लिया। उधर सती को अपनी करनी याद करके अत्यंत ग्लानि हुई। उन्होंने शिव का रुख पहचान लिया कि स्वामी ने उनका त्याग करने का निश्चय कर लिया है। अपने पाप की प्रतीति होने पर सती से कुछ कहते नहीं बना, किंतु उनका हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आमे के समान जलने लगा। इधर शिव जी ने अपने दृढ़ निश्चय के अनुसार वट वृक्ष के नीचे पद्मासन में बैठकर अखंड समाधि लगा ली।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का गायन पाठ अनुराधा मराठे और श्रीकांत परगांव के केसर में। सुबह की 6:45 हुए हैं। समय हुआ है कृषि सामयिकी का। कृषि सामयिकी में आज आप सुनिए खरीफ फसलों की।

बाल रूप निरोधक है। अब कुछ मुक्त परागित किस्में हैं जिसमें जवाहर बाजरा किस्म दो, जिसको अपन संक्षेप में JBV2 कहते हैं, ये 75 से 80 दिन में पक जाती है तथा इसका उत्पादन 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टर है। और मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि इन किस्मों का बीज ग्वालियर प्रक्षेत्र से प्राप्त किया जा सकता है। दूसरी जो किस्म है मुक्त परागित वो है जवाहर।

का उत्पादन है एवं ये इस्मट एवं डाउनी मिल्ड्यू निरोधक है। तीसरी जो मुख्य परागित किस्म है बाजरा में वो है जवाहर बाजरा किस्म 4, जिसको संक्षेप में JBV4 भी कहते हैं या JBV4। ये किस्म 75 से 85 दिन में पक जाती है तथा इसका उत्पादन 15 से 27 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्राप्त होता है और ये भी मिल्ड्यू निरोधक है। एक अन्य किस्म है राज 171, जो कि 80 से 85 दिन में पक जाती है तथा इसका 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उत्पादन प्राप्त होता है। ये किस्म डाउनी मिल्ड्यू प्रतिरोधक है। बाजरा के बाद इस क्षेत्र में मुख्यतः किसान भाई उड़द मूंग आदि की फसल भी लेते हैं, तो मैं किसान भाइयों को उड़द की भी कुछ उन्नत किस्मों के बारे में बताना चाहूँगा, जैसे पंत उड़द 30, ये 70 दिन में पक जाती है तथा इसका उत्पादन 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है। इसका दाना मध्यम व काले रंग का ग्वालियर तथा पीले मोजाइक प्रभावित क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। दूसरी है अपनी जवाहर उड़द 3, ये 70 से 75 दिन में पक जाती है, 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन है और ये पूरे मध्य प्रदेश के लिए अनुशंसित है। तीसरी जो किस्म है पंत U33, जिसको पंत उड़द 33 भी कहते हैं, 70 से 75 दिन में पक जाती है तथा इसका उत्पादन 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है। ये पीला जो विषाणु रोग के प्रति सहनशील बताई जाती है ये होती है। और इसके अलावा मैं किसान भाइयों को मूंग कुछ उन्नत किस्मों के बारे में बताना चाहूँगा, जिसमें K851, दूसरी किस्म है PUSA 105, ये 65 से 70 दिन में पक जाती है तथा इसका उत्पादन 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। इसका दाना हरा तथा पीला मोजाइक वायरस के प्रति रोग प्रतिरोधी है। तीसरी जो यहाँ की जो किस्म बहुत अच्छी आ रही है, जो हम लोग कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना पर भी लगा रहे हैं और इसका बीज भी प्राप्त हो सकता है, TJM3 है इस किस्म का नाम है, जो 65 से 70 दिन में पक जाती है तथा इसका उत्पादन भी 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है तथा ये भी पाउली मिल्ड्यू के और डाउनी मिल्ड्यू के प्रतिरोधी है। उड़द के अलावा किसान भाई यहाँ पर तिल की भी खेती करते हैं, तो मैं तिल की भी कुछ उन्नत जातियों के बारे में बताना चाहूँगा,

0: दाने का रंग भी सफेद होता है तथा ये 53% इसमें तेल होता है और 7 से 8 क्विंटल प्रति हेक्टर इसका उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है।
1: श्रोताओं, ये आप सुन रहे थे कृषि सामयिकी में खरीफ फसलों की उन्नत प्रजातियों पर जानकारी, और जानकारी दे रहे थे डॉक्टर दिनेश अवस्थी। एफएमएन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं, समय हुआ है कार्यक्रम विवरण का। कार्यक्रम विवरण में सुनिएगा आज प्रसारित तो होने वाली हमारी सभा के कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ देर बाद 6:55 पर संस्कृत समाचार दिल्ली से रिले होंगे। 7 बजे हिंदी समाचार भी हम दिल्ली से रिले करेंगे। 7:05 का समय रहेगा जल संरक्षण पर लघु वार्ता का। 7:10 पर आप प्रादेशिक समाचार भोपाल से सुनेंगे। 7:20 पर फिल्म संगीत होगा। 7:45 पर आप सुनेंगे हमारा सूचना परक दैनिक

0: कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी।
1: समाचार प्रभात दिल्ली से 8 बजे रिले करेंगे। 8:30 पर फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा, आपकी फरमाइश। कार्यक्रम लोकरंग सुबह 9 बजे सुनिएगा। 9 कलाकार होंगे, शोभाराम प्रजापति और राजेश कुशवाहा। 9:30 का समय रहेगा फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश का। जिले की चिट्ठी से हम आपको सुबह 10 बजे भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे। 10:05 पर कार्यक्रम सुगम संगीत में आज कलाकार रहेंगे अभृद्धता मैत्रा। 10:30 पर फरमाइश फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा आपकी फरमाइश।

12:25 पर आप सुनेंगे कुछ महत्वपूर्ण संदेश। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम और महिला कार्यक्रम जो ग्वालियर केंद्र की प्रस्तुति रहेगा, इसे हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

युवा श्रोता अपना मन पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी सुनेंगे सायंकाल 5 बजे। आज का युववाणी कार्यक्रम ग्वालियर केंद्र की प्रस्तुति रहेगा। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम 5:33 पर और फिर 6:30 पर हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। 7:21 पर चौपाल रहेगा, इसमें आज आप सुनेंगे भेंट वार्ता। शिवपुरी जिले में आयुष विभाग की सुविधाओं विषय पर वार्ता डॉक्टर अनिल वर्मा से, इनसे भेंट करता होंगे डॉक्टर समर्थ अग्रवाल। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम रात्रि 8 बजे भोपाल से अनुप्रसारित होंगे और इसी तरह से 9 बजे भी हम भोपाल से इसे अनुप्रसारित करेंगे।

0: श्रोताओ, आप सुन रहे थे आज जो प्रसारित होने वाली हमारी सभा के कार्यक्रमों की रूपरेखा। एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को है। थोड़ी देर में संस्कृत समाचार दिल्ली से रिले होंगी।
1: ईएम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका निधि झा। अथ वार्ताः। भारत ब्रिटेन देशयोः मध्ये व्यापक आर्थिक व्यापार सन्धिः अद्य प्रवर्तते। तेन सह सामाजिक सुरक्षा सन्धिरपि या DCC इति द्विगुण अंशदान सन्धिः नाम्ना प्रसिद्धः क्रियान्वितो जातः। अनेन ब्रिटेन देशे कार्यरतेभ्यः भारतीय व्यावसायिकेभ्यः कार्यावसराः प्रतिस्पर्धा सामर्थ्यं च वर्धिष्यन्ते। एषः सन्धिः तावत् ब्रिटेन देशस्य विपण्यां 99% यावत् शुल्कश्रेणीषु भारतीय वस्तूनां शून्य सीमा शुल्कं सुनिश्चीकरोति, येन भारतीय निर्यातस्य संवर्धनं भविष्यति। नवदिल्ल्यां ह्यः वार्ताहरान् सम्बोधयन् वाणिज्य सचिवः राजेश अग्रवालः इतं

0: किम्? भारतस्य व्यापार विकासे महत्वपूर्णं सोपानम् इति अवर्णयत्। प्रशासनेन निगदितं यत् तैः पश्चिमेशिया क्षेत्रस्य घटनाक्रमस्य सूक्ष्मावलोकनं विधीयते। भारतेन होमोर जल संधि मध्यस्थात् सुरक्षित अबाधित नौवहनस्य अथ वाणिज्य प्रवाहस्य आह्वानं पुनः विहितम्। नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् संबोधयन् विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जयसवालः प्रावोचत् यद् वैश्विकस्तरे जनानाम् आर्थिक ऊर्जा सुरक्षां सुनिश्चेतुम् एतत् परमावश्यकं वर्तते। मन्त्रालयेन ईरान् देशस्य उपाभियान प्रमुखं समाहूय एकं वक्तव्यं प्रकाशितम्। श्री जयसवालः प्रोक्तवान् यत् प्रशासनेन तेहरान् प्रशासनाय स्वकीया गभीरा चिन्ता प्रकटय्य तत्र दुरापन्नानां घटनाक्रमाणां तीव्रा निन्दा विहिता। अस्मिन् आक्रमणे एकस्य भारतीयस्य अमूल्यं जीवनं विनष्टम्, बहवः भारतीय नागरिकाः च व्रणिताः सञ्जाताः, येषु केचन गंभीराः सन्ति। प्रवक्ता अवोचत् यत् भारतेन ईरानं विरुध्य स्वकीयः दृढविरोधः प्रकटितः, सहैव एतादृशानाम् आक्रमणानां सद्यः रोधनाय बलं च प्रदत्तम्। अनेनैव सः तेनोदीरितं यत् क्लेशशमनाय उभयपक्षाभ्यां वार्तामञ्चे समागत्य संवादराजनययोः मार्गम् अनुसरणीयम्, येन पश्चिमेशियाक्षेत्रे पुनः शान्तिः स्थिरता च सम्भवेत्। वित्तीयापराधनिरोधकेन प्रवर्तननिदेशालयेन महादेव आभासीयद्युततन्त्रांशसम्बद्धे कथितधनशोधनप्रकरणे एकस्याः प्रशासनेतरतन्त्रांशवित्तीयप्रौद्योगिकीसंस्थायाः अध्यक्षः निगृहीतः। केन्द्रीयाभिकरणेन अचिरमेव तस्य अध्यक्षस्य, तस्य कुटुम्बीनाम् अथ तेन स्वयं सञ्चालितानां नियन्त्रितानां च विभिन्नानां व्यावसायिकप्रतिष्ठानां 44,900,000,000,000,000 रूप्यकाणां स्थावरजङ्गमसम्पत्तिः विधिवत् कुण्ठिता। असमराज्ये विनाशकारिणः जलाप्लावनस्य स्थितिः अद्यापि नितरां सङ्कटमयी वर्तते, येन राज्यस्य 600 अपि जनपदेषु 37,000+ जनाः अत्यन्तं दुष्प्रभाविताः। शोकाकुले अस्मिन् सङ्कटावधौ शोणितपुर जनपदस्य चारिद्वार मण्डले जले निमज्जनात् एकः जनः पञ्चत्वं गतः। भारतीय ऋतुविज्ञानविभागेन अद्य बिहार ओडिशा राज्ययोः अतिवृष्टिपरा रक्तवर्णीया सञ्चेतना प्रकटिता। ऋतुवैज्ञानिकैः इदमपि संसूचितं यत् ईदृशी एव सङ्कटस्थितिः उत्तरपूर्वभारते, छत्तीसगढ़ झारखण्ड पश्चिमबङ्गाल राज्येषु च श्वः यावत् अश्रान्तं प्रवर्तयिष्यते। पुरुषाणाम् एकदिवसीय अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां ह्यः रात्रौ त्रिस्पर्धानां श्रृङ्खलायाः प्रथमे द्वन्द्वे बर्मिंघम नगरस्य एस्बेस्टन क्रीडाङ्गणे भारतेन इंग्लैंड दलं 6 पराजितम्। अक्षरपटेलः स्वस्य उत्तमप्रदर्शनाय स्पर्धायाः श्रेष्ठक्रीडकः इति सम्मानम् अलभत। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज लागू हो गया है। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा समझौता, इसे दोहरा अंशदान समझौता भी कहा जाता है, भी प्रभावी हो गया है। इससे ब्रिटेन में भारतीय व्यवसायियों की गतिशीलता और प्रतिस्पर्धा को बल मिलेगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शुल्क लाइनों पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। नई दिल्ली में कल वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नई शुरुआत करेगा।
2: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम, रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।

0: एसएमई, इनोवेशन, लेबर, एनवायरमेंट एंड जेंडर।
1: ये समझौता वैश्विक स्तर पर एकीकृत, सुगम और प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता का पहला दौर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। ये द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को विस्तार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले वर्ष $771 मिलियन से अधिक का था। प्रस्तावित समझौते से दोनों देशों में सतत आर्थिक विकास में योगदान देकर आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने की संभावना है। भारत आज से हैदराबाद में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। 2 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, श्रम क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इस दौरान रोजगार कार्य समूह द्वारा तैयार मसौदा घोषणा पत्र पर भी विचार किया जाएगा। बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच श्रम नीतियों, कौशल विकास, श्रमिक कल्याण और समावेशी रोजगार के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करना है। भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी से नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कल हॉर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। श्री जायसवाल ने बताया कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए तनाव कम करना और बातचीत के माध्यम से समाधान निकालना जरूरी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर भी श्री जायसवाल ने कहा कि ये पाकिस्तान की लंबे समय से चली आ रही नीतियों और लोगों के अधिकारों के उल्लंघन का परिणाम है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने की अपील की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल स्पेन यात्रा के बाद कल बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स पहुंचे। यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी मजबूत करने के लिए केंद्रीय मंत्री के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी गया है। श्री गोयल ने बेल्जियम के उप प्रधानमंत्री और रोजगार, आर्थिक तथा कृषि मंत्री डेविड क्लारिनवाल से मुलाकात कर भारत बेल्जियम के बीच व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, तार्किक और कार्यबल गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। भारत वर्तमान में 7 स्थानों पर 8.78 गीगावाट क्षमता वाले 24 परमाणु रिएक्टरों का संचालन कर रहा है। इसके अलावा 8000 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाली 10 और इकाइयां निर्माणाधीन हैं। इनमें दबाव वाले भारी पानी के रिएक्टर, उबलते पानी वाले रिएक्टर और हल्के पानी वाले रिएक्टर शामिल हैं। देश मुख्य रूप से दबाव वाले भारी पानी का रिएक्टरों को संचालन करने और परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन का उपयोग कर रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने कल रात फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली। स्पेन के लिए मिकेल ओयार जाबल ने 22वें मिनट में पेनल्टी पर पहला गोल किया। इसके बाद 58वें मिनट में पेड्रो पोरो ने दूसरा गोल दागा। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। बर्मिंघम में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए। जवाब में भारत ने 45वें ओवर में 4 विकेट पर 262 रन बनाकर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। सुबह के 7:05 हुए हैं। समय हुआ है लघु वार्ता का। आज आप सुनिएगा जल संरक्षण पर लघु वार्ता। नदियां ना पिए कभी अपना जल, वृक्ष ना खाएं कभी अपने फल, अपने तन का, मन का, धन का, दूजों को दीजिए दान रे, वो सच्चा इंसान रे, इस जगती का भगवान रे। श्रोताओं, ये पंक्तियां बताती हैं कि प्रकृति प्रदत्त उपहारों को हम जितना संरक्षित रखेंगे, जितना सहेजेंगे, आने वाली पीढ़ी उतना ही धन्यवाद, उतनी ही प्रचुरता हम सबके जीवन में देगी। इसलिए आवश्यक है कि हमारे जो बुजुर्गों ने पानी को बचाने की नसीहत अरसे पहले से दी है, उसे हम समझें। कहा भी है कि रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून।

अर्थात यदि हम पानी को सहेज कर नहीं रख सके तो वो दिन दूर नहीं जब जल संकट के चलते हम अपना अस्तित्व ही खो देंगे। खाने पीने के बिना तो व्यक्ति रह सकता है, लेकिन बिना पानी के जीवन संभव नहीं, क्योंकि बिना पानी के आप एक दिन, दो दिन, तीन दिन गुजार सकते हैं, लेकिन चौथे दिन जब आपका अंतरंग में भरा हुआ जल सूखने लगेगा तो शरीर भी साथ देना छोड़ता जाएगा, और आपका शरीर साथ छोड़ा तो आप निश्चित मानिएगा जीवित नहीं रह पाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि हम स्वच्छ पानी पिएं, लेकिन पानी को सहेजने की भी पहल करें। हम पानी को बचाएं, लेकिन पानी की उपयोगिता को भी समझें। यही वजह है कि विश्व स्तर पर आज जल संकट को लेकर कई तरह के चिंतन मनन किए जा रहे हैं। विचार किया जा रहा है कि इसे बचाया कैसे जा सके। और मित्रों, पानी एक ऐसी कीमती वस्तु है जिसे उत्पन्न नहीं किया जा सकता, जिसे बनाया नहीं जा सकता कृत्रिम रूप से। ये तो प्रकृति का उपहार है। बारिश के पानी को सिर्फ और सिर्फ सहेज कर रखने से ही ये प्रक्रिया बच पाएगी। तो आइए हम कोशिश करें। हम जब जब अपना नया घर, नया कॉलोनी, नया डेवलपमेंट हाउस या फिर हम नई फैक्ट्री या दुकान बनाएं, कोशिश करें बारिश के छत से आने वाले पानी को वाटरपिट के माध्यम से जमीन के अंदर पहुंचाएं। इसके करने के दो फायदे होंगे। पहला ये कि बारिश के जल को आप सहेज सकेंगे, और दूसरा ये कि वाटरपिट संरचनाएं बन जाने की वजह से धरती का जो जल स्तर लगातार कम होता जा रहा है वह थोड़ा पड़ेगा। आमतौर पर जब पहले लोग पुरानी शिवपुरी क्षेत्र में शहर में रहते थे तो खेचो पंप के माध्यम से आधा हैंड पंप खींचा और बर्तन भर जाया करते थे। आज हालत यह है कि वहां भी 300 से 600 फुट की गहराई पर पानी नहीं। शहर के कई अनेक हिस्से ऐसे हैं जहां पर तो 1000 फुट की गहराई पर भी पानी नहीं। ये सब परेशानियां बताती हैं कि हमने लगातार प्रकृति से पानी का दोहन किया है, वापस नहीं लौटाया है। और मित्रों, कहा जाता है कि प्रकृति हमेशा अपना संतुलन बनाकर चलती है। यदि हमने पौधों को सहेजने की पहल नहीं की, हमने पर्यावरण को नहीं सहेजा, हमने जल को संरक्षण रखने की कोई पहल शुरू नहीं की, तो वह दिन दूर नहीं जब हम कई तरह की परेशानियों से जूझते मिलेंगे। नई पीढ़ी को नया भविष्य देना है, नया आकार देना है, तो हमें नई समझाइश भी देनी होगी। कुछ ऐसा करके दिखाना होगा जिसकी वजह से वो जल को सहेजने आए, पानी को सहेजें। और यदि युवा पीढ़ी पानी को सहेजने के लिए आगे आ गई तो निश्चित रूप से हम पानी को सहेज सकेंगे।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। भारत आज से हैदराबाद में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की करेगा मेजबानी। बलराम कृषि महोत्सव 2026 का आज इंदौर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे शुभारंभ। इंदौर से अबूधाबी के बीच अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा का आगाज आज से। और भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय मैच में कल 6 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारत आज से हैदराबाद में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। 2 दिवसीय इस बैठक में ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया करेंगे। बैठक में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, श्रम क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इस दौरान रोजगार कार्य समूह द्वारा तैयार मसौदा घोषणा पत्र पर भी विचार किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आयुष संस्थान में 3 दिवसीय सेमिनार सुश्रुतम का उद्घाटन करेंगी। ये सेमिनार आचार्य सुश्रुत की जयंती के मौके पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आयुर्वेद और आधुनिक शल्य चिकित्सा के एकीकरण पर देश विदेश के विशेषज्ञ चर्चा करेंगे। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता CETA आज से लागू हो गया है। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो गया है, जिससे ब्रिटेन में भारतीय व्यवसायियों की गतिशीलता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बल मिलेगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% टैरिफ लाइनों पर 0% शुल्क की सुविधा प्राप्त होगी। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कल नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि
1: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी और उद्देश्यपूर्ण मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इसमें व्यापक क्षेत्रीय कवरेज है और शुल्क तथा गैर शुल्क बाधाओं में भारी कमी आई है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, पहली बार प्रभावी सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम, रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
0: प्रदेश में बलराम कृषि महोत्सव की शुरुआत आज से होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इस महोत्सव का शुभारंभ इंदौर के लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी परिसर में करेंगे। वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसी क्रम में बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन प्रदेश भर में किया जाएगा। इंदौर के अलावा 17 जुलाई को धार, 19 जुलाई को झाबुआ, 21 जुलाई को अलीराजपुर, 23 जुलाई को बड़वानी, 25 जुलाई को खरगोन, 27 जुलाई को बुरहानपुर और 30 जुलाई को खंडवा में बलराव महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस महोत्सव में किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकी, उन्नत बीजों, नवीन कृषि यंत्रों, प्राकृतिक एवं जैविक खेती, फसल विविधीकरण, जल संरक्षण तथा शासन की किसान हितैषी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। महोत्सव में कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले उत्कृष्ट किसानों का सम्मान भी किया जाएगा। प्रदेश के बुनियादी ढांचे और जनकल्याण के लिए सरकार ने 10,800 करोड़ रुपये के अलग अलग विकास प्रस्तावों को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कल मंत्रालय में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में नगरीय अधोसंरचना विकास मद में 8,445 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद ने किसानों के हित में मूंग उपार्जन के लिए 1,587 करोड़ रुपए की निःशुल्क शासकीय प्रत्याभूति पर मोहर लगाई है। मंत्रिपरिषद ने कुंडलिया वृहद सिंचाई परियोजना 31 मार्च 2031 तक संचालन के लिए 245 करोड़ 45 लाख रुपए की मंजूरी दी है। इसे राजगढ़ और आगरमालवा जिले के 1,39,600 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित की जाएगी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। प्रदेश भर में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के दूसरे दिन आज आगरमालवा और खंडवा सहित प्रदेश के कई जिलों में कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जाएगा।

0: इसके पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल भोपाल में इस अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नशे की रोकथाम के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है।
1: हमारे लिए अब एक प्रकार का नशा नहीं रह गया, कितने प्रकार की चुनौतियां आ गई, लेकिन आज हम जब सामाजिक रूप से इस बात को महसूस करते हुए सरकार के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ये बात सही है कि चुनौतियां तो अभी भी है, लेकिन फिर भी सभी प्रकार के नशे के लिए हमारी सरकार किसी भी तरह से कोई भी कठोर कदम उठाने से पीछे नहीं रहने वाली है।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश नागरिक विमानन नीति 2025 से वित्त पोषित प्रदेश की पहली अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा इंदौर से अबुधाबी का आज शुभारंभ करेंगे। ये उड़ान प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर को संयुक्त अरब अमीरात यूएई की राजधानी अबुधाबी से सीधे जोड़ेगी। टाटा समूह की विमानन इकाई एयर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा संचालित यह सेवा सप्ताह में 4 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को उपलब्ध रहेगी। इंदौर से अबुधाबी हवाई सेवा प्रारंभ होने से मालवा निमाड़ के क्षेत्र की बड़ी आबादी को लाभ मिलेगा। भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता का पहला दौर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। यह द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को विस्तार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये वार्ता पिछले सप्ताह वर्चुअल माध्यम से आयोजित की गई थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस दौरान दोनों पक्षों ने सभी पहलुओं पर ठोस प्रगति की और कई मुख्य मुद्दों पर व्यापक सहमति बनी। भारत वर्तमान में 7 स्थानों पर 8.78 गीगावाट की कुल स्थापित क्षमता वाले 24 परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों का संचालन कर रहा है। इसके अलावा 8,000 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाली 10 और रिएक्टर इकाइयां निर्माणाधीन हैं। इनमें रिएक्टर प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, बॉयलिंग वाटर रिएक्टर और लाइट वाटर रिएक्टर शामिल हैं। देश मुख्य रूप से प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टरों को चलाने और परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन का उपयोग कर रहा है। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में तेज बारिश का दौर थमने के बाद भोपाल समेत कुछ शहरों में दिन का तापमान बढ़ गया है। मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार प्रदेश में पिछले 6 दिन से भारी या अति भारी बारिश नहीं हुई है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अब तक 241.8 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो कि सामान्य बारिश से 260 मिलीमीटर कम है। वहीं पश्चिमी हिस्से यानी भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, ग्वालियर तथा चंबल में औसत से 6% कम बारिश दर्ज की गई है। मौसम केंद्र ने आज अलीराजपुर, झाबुआ, धार, रतलाम, रीवा, मऊगंज और सतना समेत प्रदेश के 20 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। अब रुख करते हैं क्रिकेट की खबर का। क्रिकेट में कल भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए, जिसके जवाब में भारत ने 45 ओवर और 2 गेंदों में 4 विकेट खोकर 262 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला कल कार्डिफ में खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ जिला कोषालय में 16 और 17 जुलाई को तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए IFM IS केयर्स कैंप लगाया जाएगा। अशोकनगर में शासकीय जमीन पर अवैध कब्जे के मामलों में कलेक्टर ने सख्त रुख अपनाते हुए दोषियों को सिविल जेल भेजने के निर्देश दिए हैं। ओमान में होने वाली यूथ हॉकी एशियन चैंपियनशिप 2026 के लिए मध्य प्रदेश राज्य हॉकी अकादमी के 4 खिलाड़ियों आयुष, करण, महक और नौशीन का चयन भारतीय टीम में किया गया है। डिंडौरी में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत कलेक्ट्रेट परिसर से बाइक रैली निकाली गई और इंदौर में बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए जिलों में 14 जुलाई से 31 अगस्त तक दस्तक सेड स्टॉप डायरिया अभियान चलाया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत आज से हैदराबाद में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक ही करेगा मेजबानी। बलराम कृषि महोत्सव 2026 का आज इंदौर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे शुभारंभ। इंदौर से अबुधाबी के बीच अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा का आगाज आज से और भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय मैच में 6 विकेट से हराया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। सुबह के 7:20 हुए हैं और समय हुआ है फिल्म संगीत का। आइए फिल्म संगीत में सबसे पहले सुनते हैं आदमी सड़क का, फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी रवि और देवन मरवा की आवाज़ में। गीत और संगीत रवि का है।

0: श्रोता आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत।
1: लीजिए सुनिए फिल्म अंदाज का ये नगमा। इसे गाया है किशोर कुमार ने, हसरत जयपुरी की लिखी ये रचना और शंकर जयकिशन का संगीत। आइए सुनते हैं फिल्म अंदाज का ये गीत।
2: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर

0: आदर्श।
1: 10 लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
3: आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से FM 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे थे गीत और आइए सुनते हैं फिल्म आरजू का

मोहम्मद रफ़ीक ने इसे सुर दिया है, हसरत जयपुरी का गीत और शंकर जय की शंकर।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं
1: कार्यक्रम फिल्म संगीत आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से FM 100.2 MHz पर। डीजे सुनिए डार्क फिल्म का ये गीत, लता मंगेशकर और मीनू पुरुषोत्तम की आवाज में, शाहिर लुधियानवी की लिखी ये रचना और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत और लीजिए सुनिए फिल्म बंधन अनजाना का ये नगमा मनहर उदास चंद्राणी मुखर्जी के स्वर में इंदिवर की लिखी ये रचना और बप्पी लहरी का संगीत। आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत।

0: श्रोताओं भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम
1: फिल्म संगीत एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। सुबह के 7:45 हुए हैं और समय हुआ है हमारे प्रातःकालीन सूचना परक दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी।

नमस्कार। शिवपुरी सुनने वाले सभी रेडियो श्रोताओं को आपके रेडियो मित्र संजीव बांझल का नमस्कार। मित्रों, जीवन में सुख पाना चाहें तो इतना ही जाने, जैसा जीवन अपना है वैसा ही सबका माने। ये पंक्तियां बताती हैं कि यदि हम वाकई में खुद को खुशहाल सुखी देखना चाहते हैं तो फिर हम दूसरों को भी खुशी देना सीखें, और यदि हम ऐसा जीवन अपनाते हैं तो यह न केवल हमारे बेहतर जीवन के तालमेल के लिए वरन जीवन की आवश्यकताओं की परिपूर्णता के लिए भी ये सफल साबित होगा। इसी क्रम में हम सब आपसे कुछ जीवन के सूत्र, कुछ रचनात्मकताएं, कुछ शिक्षाप्रद जानकारियां और कुछ मनोरंजक कार्यक्रमों के साथ हाजिर होते हैं कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी में। आइए सुनते हैं इस आज की कुछ विशिष्ट सूचनाएं जो आप सबके साथ साथ हम सबके लिए भी बेहद प्रभावी है। पहली सूचना ये कि दस्तक अभियान ये प्रारंभ हो गया है, और इस दस्तक अभियान की शुरुआत 14 जुलाई यानी कल से हो गई है। पूरे जिले भर के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 5 साल से कम आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उन पर विशेष फोकस किया जा रहा है। इसी क्रम में इस कार्यक्रम का शुभारंभ आंगनवाड़ी केंद्र महलसराय पर जिला पंचायत अध्यक्ष नेहा यादव द्वारा किया गया। इसमें मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय ऋषिश्वर, महिला कार्यक्रम अधिकारी DS जादौन, जिला टीकाकरण अधिकारी रोहित भटकारिया सहित कई अधिकारी और प्रशासनिक लोग उपस्थित रहे। इस आयोजन के दौरान डॉक्टर संजय ऋषि सर ने बताया कि यह अभियान 14 जुलाई से 31 अगस्त तक चलेगा, और इस अभियान के अंतर्गत 5 साल से कम आयु के ऐसे बच्चे जो दस्त, कुपोषण और अन्य बाल्यकालीन बीमारियों से ग्रसित हैं उनकी पहचान कर उन्हें समुचित उपाय दिया जाएगा और शिशु बाल मृत्यु दर में कमी लाना इस आयोजन का प्रमुख उद्देश्य है। अभियान के तहत जिले में 33 कार्य दिवसों में विशेष गतिविधियां आयोजित होंगी, जिसमें ANM, आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संयुक्त रूप से घर घर जाकर 5 साल से कम आयु के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करेंगी, जिसमें दस्त, कुपोषण और अन्य बालकालीन बीमारियां जो प्रभावित बच्चों की सेवाएं हैं उनको प्रभावित करेंगी, और इसके साथ ही यदि वह बीमार निकलते हैं उच्च जोखिम वाले

होते हैं तो उन्हें तत्काल उच्च स्वास्थ्य केंद्रों पर रेफर किया जाएगा। आयुष्मान आरोग्य मंदिर और हेल्थ एंड वेलनेस के आधार पर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा इसकी पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है। प्रत्येक गांव में कम आयु के बच्चों को 2 RSS के पैकेट, ORS पैकेट के साथ साथ 14 जिंक की टैबलेट वितरित की जाएंगी और इसके साथ ही 6 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों के में जो आयरन फॉलिक एसिड जिसे हम IFA कहते हैं उसके सिरप और 9 से 5 वर्ष तक के बच्चों के अनुरूप विटामिन ए के दिया जाएगा। परिवार को दस्त होने पर ORS और जिंक के सही उपयोग के साथ साथ स्वच्छ हाथ धोने की आदत भी डाली जाएगी। निश्चित रूप से इस अभियान के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज, जिला चिकित्सालय, सिविल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, शहरी प्राथमिक केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, संजीवनी केंद्र, आंगनवाड़ी केंद्र, इन सब पर बच्चों को दवा उपलब्ध कराई जाएगी। तो श्रोताओं, इसके लिए जिला स्तर से एक विशेष कार्यनीति बनी है, इस पर भी सभी को फोकस करने की आवश्यकता है और उसके साथ साथ कुछ और सूचनाएं आपसे साझा कर लेते हैं। जो दस्तक अभियान शुरू किया गया है इसके तहत कई बीमारियों के मरीज सामने आ जाएंगे और उपचार भी पा जाएंगे और समय समय पर इसी तरह के अभियान लोगों के स्वास्थ्य जांच परख के लिए आवश्यक भी होते हैं। अब बात कर लेते हैं जन सुनवाई की। जन सुनवाई किस तल्लीनता के साथ और तत्परता के साथ और संवेदनशीलता के साथ जिला प्रशासन द्वारा आयोजित की जाती है, इसकी नज़ीर तब देखने मिली जब जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर सी अर्पित वर्मा की अध्यक्षता में जिला मुख्यालय पर जन सुनवाई मंगलवार को आयोजित हुई। इसमें जो आवेदक सुनवाई के लिए आवेदन लेकर पहुंचे उनको निराकृत किया गया। इसके तहत मोबाइल से फोटो खींचकर सीधे तहसीलदार को कुछ मामले सौंपे गए जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों से आई शिकायतों का तुरंत संज्ञान लेते हुए कलेक्टर श्री अर्पित वर्मा ने संबंधित तहसीलदारों को मौके से ही फोन लगाया और मोबाइल के आवेदनों की फोटो खींचकर तहसीलदारों को भेजी। इन राजस्व मामलों को समय सीमा में ही निपटाने के निर्देश उन्होंने दिए। वहीं संवेदनशीलता का परिचय दिखाते हुए कलेक्टर अर्पित वर्मा ने अनुकंपा नियुक्ति के मामले में भी तत्परता दिखाई। उन्होंने नमन खरे, प्रियांशु शर्मा, संदीप चौहान जो पटवारी के रिक्त पदों पर तथा मनोज आदिवासी को चौकीदार के पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी, जिस पर सभी युवाओं ने उनके प्रति आभार जताया। वहीं एक दिव्यांग जो एरिस हैं उनके पिता को तुरंत जन्म प्रमाण पत्र में सुधार का लाभ मिला क्योंकि इसमें लंबे समय से वह परेशान चल रहे थे। इस तरह की कई समस्याओं का समाधान मौके पर ही कलेक्टर अर्पित वर्मा

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे। 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
2: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख?
3: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
3: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
3: पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
4: आरबीआई कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: श्रोता आप सुन रहे थे ये संदेश, आइए जुड़ते हैं कुछ अन्य सूचनाओं से जो हम सबके लिए बहुत आवश्यक है। अब मकानों की और घरों की जनगणना तो हो चुकी है और इस जनगणना के बाद अब हस्त पुस्तिका कार्य का प्रशिक्षण शुरू किया गया है, जिसमें भोपाल से आए प्रशिक्षक 13 जुलाई से 20 जुलाई तक प्रशिक्षण दे रहे हैं पीजी कॉलेज में। इसमें प्रशिक्षण के दौरान जनगणना

जो हस्त पुस्तिका की है उसमें ग्राम और नगर से निर्देश से संबंधी आंकड़ों को जोड़ना, मोबाइल ऐप और पोर्टल का उपयोग करना, कुछ अन्य जरूरी सामग्रियों को बताया जा रहा है कि किस तरह से इस त्रुटि रहित कार्य को किया जा सकता है और इसमें डिजिटल प्रणाली का उपयोग हो। इसके लिए 1 मई से 30 मई तक प्रदेश में मकानों की गणना का कार्य पूरा हो चुका है। अब प्रगणकों ने घर घर जाकर मोबाइल ऐप के माध्यम से डिजिटल डेटा संकलित करने की कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसके तहत जो त्रुटियां रह गई हैं उनका भी सुधार किया जा रहा है। इसके साथ ही 23 जुलाई को तहसील करेरा में आकांक्षी युवाओं के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बेरोजगार युवा रोजगार हासिल कर अपने जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। वहीं कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं में एक और सूचना जो बिजली कटौती से संबंधित होती है उसे भी हम आपके साथ साझा कर लेते हैं। वह सूचना ये है कि आज विद्युत कटौती जो रहेगी उसमें जवाहर कॉलोनी इमामबाड़ा के फीडर सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक बंद रहेंगे। इसके बंद रहने से स्टेडियम, हवाई पट्टी, महल सराय, अम्बेडकर कॉलोनी, पीएसके लाइन, यादव मोहल्ला, बड़ा बाजार, महल सराय, हरजन बस्ती, सितोले कोठी, इमामबाड़ा और जवाहर कॉलोनी, यहाँ पर लाइट की कटौती रहेगी और ये लाइट की कटौती सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगी। लोग अपने काम समय से पूर्व पूरा कर सकें इसके लिए ये किया गया है। इसके साथ साथ पीएम पोषण योजना के तहत विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है, जिसमें प्रभारी अधिकारी मौके पर पहुंचकर ये निरीक्षण कर रहे हैं कि किस तरह से स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन का वितरण किया जा रहा है, विद्यार्थियों को किस ढंग से मापक अनुसार ये भोजन मिल रहा है या नहीं, इसकी मॉनिटरिंग के लिए जिले स्तर के अधिकारियों की टीम विभिन्न स्कूलों में पहुंचकर जगह जगह मॉनिटरिंग कर रही है और जान रही है कि कैसे इसमें सुधार लाया जा सकता है। वहीं जो विभिन्न सामाजिक संगठन हैं और विभिन्न संस्थाएं हैं वो इस समय पौधारोपण अभियान चला रही हैं। इसके तहत वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन ने औचक निरीक्षण किया और पौधे लगाए हैं, जिसके तहत कई जगह उन्होंने पौधारोपण करके अपनी जगहों को सुरक्षित और संरक्षित रखने के साथ साथ परिसर को हरा भरा रखने की जानकारी दी है। इसी के साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं जो आप सबके लिए आवश्यक हैं उनको भी हम साझा कर लेते हैं। यातायात विभाग ने भी एक बड़ी कार्रवाई जिले में की है, जिसमें उन्होंने स्कूली बसों का निरीक्षण किया है, जिसमें पाया कि कुछ स्कूली बसें ऐसी हैं जिनमें नियमों का पालन नहीं किया है और नियमों का पालन ना करने के चलते कई सारे विद्यार्थी इससे प्रभावित होते हैं, क्योंकि यदि अनफिट बसें चलेंगी, नियमों का पालन करते हुए नहीं चलेंगी, तो फिर निश्चित रूप से जो बच्चों को स्कूल बसें स्कूल तक लेकर जाती हैं उसमें बहुत दिक्कतें आएंगी और उस दिक्कत के आने से लोगों को परेशानी ये होगी कि वो कभी भी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। ऐसे में इन सब परेशानियों से बचने के लिए अब जिला प्रशासन ने स्कूलों में जाकर बसों की पड़ताल के निर्देश यातायात विभाग और आरटीओ विभाग को दिए हैं, जिसके तहत दोनों विभाग संयुक्त रूप से अभियान चलाकर मौके पर पहुंच रहे हैं। स्कूल में पहुंचकर वो न केवल रिकॉर्ड देखते हैं वरन ये भी जानकारी एकत्रित करते हैं कि बसों की हकीकत क्या है। इसी क्रम में कुछ दिन पहले सेंट चार्ल्स स्कूल की 14 बसों की चेकिंग की गई, जिसमें से एक बस तो पूरी तरह से अनफिट पाई गई, उसकी कार्रवाई भी यातायात विभाग ने की। फिर वहीं उन्होंने हैप्पी डेज स्कूल और सेंट बेनेडिक्ट स्कूल की 12 बसों का निरीक्षण मंगलवार को किया, जिसमें 13,000 रुपये शमन शुल्क यातायात प्रभारी रणवीर सिंह यादव द्वारा लगाया गया। उन्होंने बताया कि जो किसी बस में स्पीड गवर्नर नहीं था तो किसी में इंडिकेटर नहीं था, किसी की बस में आवाज़ आ रही थी तो कहीं टायर वोर खराब थे, कई तरह की कमियां बस में देखने को मिली और बस क्रमांक MP08P1055 की हालत तो इतनी ख़राब थी कि वो अनफिट थी। इस तरह से उनकी चालानी कार्रवाई। तो श्रोताओं, कुछ उपयोगी जानकारियों के साथ अपने

0: रेडियो मित्र संजीव बांझल को दीजिए इजाजत, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे नमस्कार शिवप्री, थोड़ी देर में समाचार प्रभात दिल्ली से रिले होगा।
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू, लगभग 99% भारतीय निर्यात पर शुल्क नहीं। केंद्र ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा की। महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी का 8वां चरण आज से। होर्मुज में जहाजों पर ईरानी हमलों के जवाब में अमरीका ने ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू की। फ्रांस को हराकर स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और अर्जेंटीना का मुकाबला आज। और भारत ने पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज लागू हो गया है। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो गया है। नई दिल्ली में कल वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि ये समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नई शुरुआत करेगा।
2: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम, रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि समझौते से ब्रिटेन में भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे।
3: ये समझौता लोगों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के एक साथ लागू होने से भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। इस समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग के सामान और ऑटो कॉम्पोनेंट पर लगभग 18%, चमड़े और फुटबियर उत्पादों पर 16% तक तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क घटकर अब 0 हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विग्नैनी पांडे।
1: भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौता वार्ता का पहला दौर सफलतापूर्वक सम्पन्न हो गया है। ये द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को विस्तार देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले वर्ष $771 मिलियन से अधिक का था। प्रस्तावित समझौते से दोनों देशों में सतत आर्थिक विकास में योगदान देकर आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने की संभावना है। भारत आज से हैदराबाद में ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। 2 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, श्रम क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इस दौरान रोजगार कार्य समूह द्वारा तैयार मसौदा घोषणा पत्र पर भी विचार किया जाएगा। बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच श्रम नीतियों, कौशल विकास, श्रमिक कल्याण और समावेशी रोजगार के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करना है। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा की है। कोलकाता में कल कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। एक रिपोर्ट।
4: बैठक के बाद केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी है। राज्य सरकार के अंशदान के साथ अगले वर्ष मार्च तक पंचायत के माध्यम से 12,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार के लक्ष्य ग्रामीण रोजगार की अवधि को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। साथ ही वीवीजी रामजी अधिनियम 2025 के तहत नए ग्रामीण रोजगार ढांचे को लागू किया जाएगा।

0: इसमें टिकाऊ ग्रामीण परिसंपत्तियों के निर्माण पर विशेष बल दिया जाएगा। बैठक में सड़क, रेलवे, मेट्रो, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, कोयला तथा श्रम क्षेत्रों के 82,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाले 19 प्रमुख परियोजनाओं को भी समीक्षा की गई। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी, कलकत्ता।
1: कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी आज नई दिल्ली में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी के 8वें चरण की शुरुआत करेंगे। इनमें 9 राज्यों की 20 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंड शामिल हैं। इन खनिजों में मॉलिब्लेडेनम, ग्रेफाइट, ग्लूकोनाइट, दुर्लभ पृथ्वी तत्व, टाइटेनियम, टंगस्टन, पोटाश, लिथियम, सीजियम और रुबिडियम शामिल हैं। नीलामी के 7 चरण पूरे होने के साथ मंत्रालय ने 88 महत्वपूर्ण खनिज खंडों में से 56 की सफलतापूर्वक नीलामी की है। मंत्रालय ने कहा है कि खनिज क्षेत्र ने पिछले वित्त वर्ष में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जिसमें 212 खनिज खंडों की सफलतापूर्वक नीलामी हुई है। ये नीलामी प्रणाली की शुरुआत के बाद से किसी भी वित्तीय वर्ष में सबसे अधिक है। इसमें 22 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंड शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर ईरान के हालिया हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अन्य देशों के लिए होर्मुज का रास्ता खुला है, लेकिन ईरान के लिए रास्ता बंद रहेगा। श्री ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अमेरिका आज रात ईरान पर हमला करने वाला है। उन्होंने कहा कि जब तक ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक अमेरिका उसके सभी बिजली संयंत्रों और पुलों को निशाना बनाएगा। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने बड़े पैमाने पर हमले करते हुए बहरीन में हथियारों और भंडारण केंद्रों को निशाना बनाया है। भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कल होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
2: पश्चिम एशिया में हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
1: होर्मुज जलडमरू मध्य में दो व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों के बाद पश्चिम एशिया में समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्रभावित क्षेत्र में काम कर रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए व्यापक पहल शुरू की है।
3: पश्चिम एशिया में समुद्री सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने क्षेत्र में संचालित प्रत्येक भारतीय नाविकी जहाजवार वास्तविक समय में निगरानी और प्रभावित प्रत्येक भारतीय नाविक के लिए समर्पित संपर्क अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को विदेश मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारतीय नौसेना, डीजी शिपिंग तथा ईरान और ओमान स्थित भारतीय मिशनों के साथ 24 घंटे समन्वय बनाए रखने का भी निर्देश दिया। श्री सोनोवाल ने डीजी शिपिंग को फारस की खाड़ी, होर्मुज जलडमरू मध्य और ओमान की खाड़ी में संचालित सभी जहाजों पर तैनात भारतीय नाविकों की निगरानी के लिए एक परिचालन डैशबोर्ड स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने नौवहन सुरक्षा, चिकित्सीय निकासी और स्वदेश वापसी से संबंधित जानकारी के लिए निरंतर समन्वय बनाए रखने को भी कहा। केंद्रीय मंत्री ने जहाज मालिकों, पोत प्रबंधकों और भर्ती एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि किसी भी भारतीय

0: नाविक को पर्याप्त जानकारी, सुरक्षा और सहायता के बिना यात्रा के लिए बाध्य न किया जाए। रोहन के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की सुप्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू होने जा रही है।

0: बहन देवताओं की श्री जगन्नाथ मंदिर से श्री गुंडीचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा का प्रतीक है। भक्त श्री गुंडीचा मंदिर को मौसी माँ यानी भगवान की मौसी का घर मानते हैं। इस पवित्र रथ उत्सव में शामिल होने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पूरी पहुँचे हैं। तीन भव्य रथ नंदीघोष, तालध्वज और दर्प दलन को खूबसूरती से सजाया गया है और वे मंदिर के सिंह द्वार के सामने खड़े होने के लिए तैयार है। पूरी के गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव सोने की झाड़ू से रथ के मंच की सफाई करेंगे, जिसके बाद भक्त रथ को ग्रैंड रोड पर खींचेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डेलस में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हरा दिया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज अटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। बर्मिंघम में कल इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए। जवाब में भारत ने 45वें ओवर में 4 विकेट पर 262 रन बनाकर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। कप्तान शुभमन गिल ने सर्वाधिक 80 रन बनाए। अक्षर पटेल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच कल कार्डिफ में खेला जाएगा। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद मुकेश। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध तेज होने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, होर्मुज पर हक की जंग तेज, अमेरिका ने परमाणु संयंत्र वाले शहर बुशहर पर बम बरसाए, ईरान का बहरीन और जॉर्डन पर हमला, नाकेबंदी पर बड़े देशों ने जताई नाराजगी, चीन ने की सुरक्षित आवाजाही की अपील, कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल। वहीं नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, ईरान के हमले में एक की मौत, भारत ने किया विरोध, होर्मुज में 2 तेल टैंकरों पर अटैक, ईरान के दूत को किया तलब। पत्र के अनुसार होर्मुज में 20% शुल्क से पीछे हटे ट्रंप, कहा अब ट्रेड डील होगी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, गुलाम जम्मू कश्मीर में 9 प्रदर्शनकारियों की मौत, भारत ने जोर देकर कहा नागरिकों पर दमन और बुनियादी अधिकारों के उल्लंघन के लिए पाकिस्तान जवाबदेह है। पत्र के अनुसार पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी। अमर उजाला ने पहली बार पहली जीत शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, लॉर्ड्स के 142 साल के इतिहास में यहां खेले गए पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत की जीत का महत्व, इससे समझा जा सकता है कि जहां भारतीय पुरुष टीम को यहां पहली टेस्ट जीत जीतने के लिए 54 साल का इंतजार करना पड़ा था, वहीं महिला टीम ने पहले ही प्रयास में ये करिश्मा कर दिखाया। राजस्थान पत्रिका का शीर्षक है, पहली बार तिमाही में 4,000 करोड़ रुपए का कारोबार पार, इंडिया पोस्ट ने रचा इतिहास। पंजाब केसरी की सुर्खी है, नासा की अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन की अंतरिक्ष यात्रा शुरू।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू, लगभग 99% भारतीय निर्यात पर शुल्क नहीं। केंद्र ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा की। महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी का 8वां चरण आज से। होर्मुज में जहाजों पर ईरानी हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू की। फ्रांस को हराकर स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और अर्जेंटीना का मुकाबला आज। और भारत ने पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस: इंडिया यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट कम्स इनटू फोर्स, पैक्ट अनलॉक्स ड्यूटी फ्री एक्सेस फॉर नियरली 99% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स। Sent announces 8,508 crore rupees package for rural development in West Bengal. Government to launch a tranche of auction for critical and strategic mineral blocks today. US resumes blockade of Iranian ports in response to Iran's attacks on commercial ships in Strait of Hormuz.

श्रोताओं भी आप सुन रहे थे इस फिल्म का ये गीत। आइए सुनते हैं बीबी हो तो ऐसी। जी हाँ, इस फिल्म का ये गीत मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में, समीर की लिखी ये रचना है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये प्यार।

कार्यक्रम लोकरंग में आप सुन रहे थे शोभाराम प्रजापति और राजेश कुशवाहा को। अभी आपने सुना राजेश कुशवाहा का गाया ये लोकगीत। आइए अब सुनते हैं उनका ये चेतावनी गीत।

आप सुन रहे हैं लोक रंग में कार्यक्रम लोक रंग के अंतर्गत शोभा राम प्रजापति और राजेश कुशवाहा को। अभी आप सुन रहे हैं राजेश कुशवाहा के गाए लोकगीत। लीजिए सुनिए उनका गाया ये रसिया।

0: सुन रहे थे कार्यक्रम लोक रंग में लोक कलाकारों को, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।
1: सबसे पहले सुनिए देश प्रेमी फिल्म का ये गीत, आशा भोसले लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की आवाज में, आनंद बख्शी की लिखी रचना।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनिए फिल्म हम आपके हैं कौन। इस फिल्म का ये नगमा लता मंगेशकर, एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में, देव कोहली की लिखी रचना, राम लक्ष्मण का संगीत। आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से एफ एम 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए हमराज फिल्म का ये गीत। इसे गाया है महेंद्र कपूर, आशा भोसले ने, साहिर लुधियानवी की लिखी है रचना और रवि का संगीत। आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत।

0: जिले की चिट्ठी।
1: प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है हरदा जिले की चिट्ठी। आलेख लोमेश गौर का है और वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। हरदा जिले में बीते दिनों मानसून की दस्तक के साथ मौसम ने करवट ली। शुरुआती बारिश के बाद किसानों ने बड़े उत्साह के साथ सोयाबीन, मक्का और अन्य खरीफ फसलों की बुआई पूरी की। हालांकि लगातार बारिश से कई स्थानों पर नदी नाले उफान पर आ गए, ग्रामीण मार्ग प्रभावित हुए और कुछ इलाकों में जलभराव की स्थिति भी बनी। बारिश थमने और धूप निकलने से लोगों को राहत मिली तथा जनजीवन पुनः सामान्य होने लगा। जिले के वनांचल क्षेत्र के उन किसानों के लिए शासन ने नई व्यवस्था लागू की है जिनके पास भूमि का पट्टा या वनाधिकार प्रमाण पत्र नहीं है। अब ऐसे किसान स्वघोषणा पत्र के आधार पर खाद बीज के लिए ई टोकन प्राप्त कर सकेंगे। जिले के खिरकिया रेलवे ओवरब्रिज परियोजना के लिए आईआईटी मुंबई की विशेषज्ञ टीम ने बीते दिनों ब्रिज कॉरपोरेशन के अधिकारियों के साथ अलाइनमेंट का निरीक्षण किया। करीब 3 वर्ष से लंबित इस परियोजना को लेकर उम्मीद जताई गई है कि तकनीकी रिपोर्ट मिलने के बाद निर्माण कार्य आगे बढ़ सकेगा। हरदा जिले में वट सावित्री पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा के साथ बीते दिनों मनाया गया। बड़ी संख्या में सुहागिन महिलाओं ने वट वृक्ष की पूजा कर 108 परिक्रमा लगाई और परिवार की

सुख समृद्धि तथा अखंड सौभाग्य की कामना की। स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र की यदि बात करें तो लॉयंस क्लब हरदा अंबर ने निशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन बीते दिनों किया। इस शिविर में मोतियाबिंद से पीड़ित मरीजों को ऑपरेशन के लिए भोपाल भेजा गया। वहीं राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर जिले के वरिष्ठ चिकित्सकों का सम्मान भी किया गया। जन जागरूकता के क्षेत्र में पुलिस विभाग द्वारा जिले में सेफ क्लिक 2.0 अभियान का आयोजन किया गया। जिस अभियान के तहत राजा बरारी गाँव में साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं जिला जेल हरदा में प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा आध्यात्मिक एवं समाज सुधार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीते दिनों जिले में आयोजित पौधरोपण अभियान, स्वास्थ्य शिविर, सम्मान समारोह, स्वच्छता अभियान और जन जागरूकता कार्यक्रमों ने जिले की सामाजिक सक्रियता को नई दिशा दी। पुलिस विभाग में लंबे समय से लंबित पदोन्नति प्रक्रिया बीते दिनों पूरी हो गई। विभागीय पदोन्नति समिति ने मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 के तहत कुल 109 आरक्षकों को प्रधान आरक्षक के पद पर पदोन्नत किया है। हरदा जिले में दस्तक सह स्टॉप डायरिया कैंपेन का पहला चरण 31 अगस्त तक संचालित किया जाएगा। इसके लिए जिले के अनुमानित 69,922 बच्चों को सेवाएं प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। कोष एवं लेखा संचालनालय द्वारा IFMIS पोर्टल की तकनीकी समस्याओं के निराकरण के लिए जिले में 16 और 17 जुलाई को IFMIS केयर्स कैंप लगाया जाएगा। मेरा युवा भारत अंतर्गत जिला सलाहकार समिति की बैठक बीते दिनों कलेक्टर सिद्धार्थ जैन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। इस बैठक में उन्होंने जिले में पोर्टल पर 15 से 29 आयु वर्ग के अधिक से अधिक युवाओं का पंजीयन, विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय और वार्षिक कार्य योजना के अंतर्गत आयोजित होने वाले कार्यक्रमों पर विस्तृत चर्चा कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। हरदा जिले में ग्रीष्मकालीन फसल मूंग का समर्थन मूल्य पर उपार्जन 1 जुलाई से 10 अगस्त तक किया जा रहा है। जिले में किसानों की सुविधा के लिए 40 ग्रीष्मकालीन मूंग उपार्जन केंद्र स्थापित किए गए हैं। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर बीते शनिवार को ADR सेंटर में स्कूली बच्चों के लिए विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। न्यायाधीश चंद्रशेखर राठौर ने उपस्थित बच्चों को बताया कि भारत वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। विद्यार्थियों को यह संदेश दिया गया कि जागरूक नागरिक बनकर वे समाज में जनसंख्या नियंत्रण, लैंगिक समानता, शिक्षा के प्रसार और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हरदा कलेक्टर ने जिले में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए समुदाय में जागरूकता लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ठोस अपशिष्ट का बेहतर प्रबंधन विकसित करने के लिए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वार्ड प्रतिनिधियों से चर्चा की जाए। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड हरदा वृत्त ने विद्युत चोरी और अनाधिकृत विद्युत उपयोग पर लगाम लगाने के लिए विशेष सघन जांच अभियान चलाया। विद्युत अधिनियम एवं कंपनी के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करते हुए लगभग 1,15,35,000 रुपए की बिलिंग की गई। पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए जनपद पंचायत हरदा ने हंडिया क्षेत्र के नर्मदा तट के पास की दुकानों में पॉलीथीन और सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। ये जारी आदेश 9 जुलाई से प्रभावी हो गया है। पहली बार उल्लंघन करने पर 200 रुपए का आर्थिक दंड तथा दूसरी बार उल्लंघन करने पर 500 रुपए का आर्थिक दंड और तीसरी बार या बार बार उल्लंघन करने पर 1,000 रुपए का जुर्माना तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान को सील करने या लाइसेंस निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी। हरदा जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी और जिले की समसामयिक गतिविधियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे ज़िले की चिट्ठी। इसमें आज आपने सुनी हरदा ज़िले की चिट्ठी। आलेख लोमेश कुमार गौर का था, वाचन था अभिषेक कटियार का और इसका प्रसारण किया गया आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।
1: इधर शिव जी ने अपने वृक्ष के नीचे
2: एफएमएंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। सुबह के 10:05 हुए हैं और समय हुआ है कार्यक्रम सुगम संगीत का। सुगम संगीत में आज कलाकार है अभिदिता मैत्रा। आइए सुनते हैं उनकी गाई कुछ गजलें। सबसे पहले सुनते हैं शायर राज इलाहाबादी की ये गजल।

श्रोताओं, कार्यक्रम सुगम संगीत में आज कलाकार हैं अविंता मैत्रा। आइए सुनते हैं उनकी गाई ये गजल, रचना शायर

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत, और सुगम संगीत में आज कलाकार हैं अभिनेता मैत्रा। आइए सुनते हैं अब उनका गाया ये

श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत, और आइए आप सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आइए सबसे पहले सुनते हैं काला पत्थर, इस फिल्म का ये गीत। इसे गाया है लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों ने। साहिर लुधियानवी की लिखी ये रचना, राजेश रोशन का संगीत। आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश का इस फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। सुन रहे थे काला पत्थर फिल्म का ये गीत। आइए अब सुनते हैं प्रेम पुजारी फिल्म का ये गीत, लता मंगेशकर की आवाज में, नीरज की लिखी रचना, एस डी बर्मन का संगीत। आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। लीजिए सुनिए दोस्ताना फिल्म का ये गीत, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार की आवाज में, आनंद बख्शी की लिखी ये रचना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। और दोस्तों, ये गीत इसलिए भी हम सुनवा रहे हैं क्योंकि आज शत्रुघ्न सिन्हा का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन होने के साथ साथ उनकी फिल्मों के ये कुछ नगमे आप तक हम पहुँचा रहे हैं। आइए सुनते हैं दोस्ताना फिल्म का अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा की जोड़ी का ये प्यारा सा गीत।

शत्रुघ्न सिन्हा एक ऐसा नाम जिनके ना केवल डायलॉग फेमस हुए वरन उनकी एक्टिंग की अदायगी कुछ ऐसी थी जो लोगों को प्रभावित करती थी। कुछ इसी तरह का गीत फिल्म क्रांति का नितिन मुकेश लता मंगेशकर की आवाज़ में, संतोष आनंद की लिखी ये रचना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे क्रांति फिल्म का ये गीत। आइए अब सुनते हैं शत्रुघ्न सिन्हा की बहुत सारी फिल्मों के गीत लोकप्रिय हुए, उन्हीं में से एक फिल्म थी जानी दुश्मन। इस फिल्म में हालांकि अलग अलग किरदार के कई सारे पात्र शामिल रहे, लेकिन इस फिल्म में जो डोली के साथ गीत रहा और उसमें बहन की सुरक्षा के लिए भाई का फर्ज

निभाते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने अभिनय किया वह सराहनीय रहा। आइए सुनते हैं इस फिल्म का वही गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, वर्मा मलिक का लिखा ये गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ही आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। सुबह के 11 बजने को हैं अब आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम भोपाल से अनुप्रसारित होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: गीत सुने लेकर एक बार फिर हाजिर हैं हम आपके साथ। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त रक्षा तवर। कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता दें कि हम इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड करते हैं रोजाना सुबह 10:30 से लेकर 11 बजे तक। तो हमें कार्यक्रम में फोन करें और अपने पसंद के गीत सुने, और इसके लिए आपको डायल करना होगा हमारा नंबर जो है 2660902 और एसटीडी कोड है 0755। नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
2: हेलो
1: नमस्कार,
2: बालोदा लखा जिला उज्जैन से कन्हैयालाल प्रजापति बोल रहा हूँ मैडम।
1: उज्जैन से कन्हैयालाल जी, कैसे हैं आप?
2: बहुत बढ़िया।
1: क्या चल रहा है?
2: चल रहा है, खेती का काम कर रहे हैं और ये डोरे चला रहे हैं खेत के अंदर। हमने सोचा कि अब लगा दे हैं, क्या है कि याद आ गई है।
1: अरे वाह, किस चीज की खेती अभी कर रहे हैं आप, क्या लगाया हुआ है?
2: खेती करते हैं मैडम उनका।
1: अच्छा, सोयाबीन लगा हुआ है। अरे वाह, और खेती करते हुए आप गीत सुन रहे हैं?
2: गीत सुना दीजिए बारिश का।
1: बताएं कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
2: वो मेघारे मेघारे मत पड़ जाएगा, ये प्यासा सावन का बहुत बढ़िया है
1: जी। लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत है।
2: मेघारे मेघारे मत पड़ दे आज धूप में कष्ट।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर गाया आपने।
2: मैं गायक कलाकार भी हूँ मैडम।
1: अरे वाह, अरे वाह।
2: वो क्या है, सुंदरकांड वगैरह सभी में जाता हूँ, रामायण वगैरह वगैरह में सभी में जाता हूँ।
1: अरे वाह, बहुत बहुत अच्छी बात है। चलिए तो आपको आपकी पसंद का ये गीत सुनवा देते हैं, लता मंगेशकर और

0: नमस्कार, कार्यक्रम
1: नमस्ते
0: फोन करेगी, सुने
1: मैडम।
0: जी। नमस्ते, किन से बात हो रही है?
1: मैं पिंडरी जिला मंडला से सुमत कुमार जैन बोल रहा हूँ मैडम।
0: मंडला से सुमत कुमार जैन जी, कैसे हैं आप?
1: हाँ, पिंडरी जिला मंडला।
0: जी, कैसे हैं आप?
1: अच्छा हूँ अभी तक तो।
0: अभी तक मतलब क्या होने वाला है?
1: अब ऊपर वाले की मर्जी, आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा।
0: अरे नहीं, सब बढ़िया ही
1: अभी तो
0: रहेगा।
1: आपसे बात कर रहा हूँ, जब तक तो बढ़िया।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। और क्या करते हैं आप सुमत जी?
1: मैं रिटायर्ड शिक्षक हूँ मैडम।
0: आप रिटायर्ड शिक्षक हैं,
1: जी जी
0: क्या पढ़ाते थे आप?
1: मैं सामाजिक विज्ञान पढ़ाता था, सोशल साइंस।
0: कितना समय हो गया आपके रिटायरमेंट को?
1: 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 21 में रिटायर हुआ था।
0: अच्छा, तो अब आप क्या करते हैं, मतलब कैसे दिखाई देता है आपका जीवन, जो समय है वो कैसे व्यतीत करते हैं?
1: पहले मैं सरकारी नौकर था मैडम, अब मैं घर का नौकर हूँ।
0: अरे वाह, ये भी अच्छी बात है, घर
1: जी
0: में घर वालों की सेवा करना बड़ी अच्छी चीज़ है। चलिए, तो फिर आज गीत कौन सा सुनना चाहते हैं? कार्यक्रम है, फोन करें, गीत सुने।
1: अच्छा जी मैडम, आप सुना दीजिए, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, नमक हलाल का।
0: नमक हलाल फिल्म से बहुत अच्छा
1: मेरे
0: गीत है।
1: साथी हैं कृपाल पटेल, कमला प्रसाद शर्मा, राधे श्याम केवट, मोहम्मद मोहराली। इन लोग भी आप लोगों को फोन लगाते रहते हैं, लेकिन फोन बहुत लगते नहीं है। उंगलियां दर्द करने लगती जब जाके लगता है।
0: जी, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत सारे हमारे श्रोता हैं जो
1: हाँ,
0: कोशिश करते
1: आपका
0: हैं।
1: कार्यक्रम बहुत लोकप्रिय है ना मैडम, इसलिए।
0: जी
1: और आप लोगों की वाणी और आप लोगों की बात करने का तरीका, लहजा बहुत ही शानदार है, और कार्यक्रम भी बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किए जाते हैं। बात आपकी, गीत हमारे घर के जो कार्यक्रम आता है उसमें अच्छे विषय उठाते हैं आप लोग, जिससे बहुत ही ज्ञान वर्धक भी होता है और लोगों को अपने विचार रखने में भी बहुत आनंद आता है।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब आप श्रोताओं के कारण ही है,
1: जी
0: आपका
1: जी
0: ही प्यार है।
1: नहीं, आप लोगों की ऐसी सोच और आप लोगों का ऐसा कार्यक्रम प्रस्तुत करने का तरीका
0: जी
1: जो लोगों तक पहुंचे, ऐसी सोच भी और ऐसे तरीका को अपनाने के लिए बहुत बहुत साधुवाद है। बहुत अच्छा लगता है मैडम, बहुत धन्यवाद है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। कार्यक्रम
1: जी
0: में आपने फोन किया उसके लिए भी। और अब आपको आपके पसंद का गीत, आपको और आपके मित्रों को आपकी पसंद का एक
1: जी
0: गीत सुनवा देते हैं, किशोर कुमार की आवाज़ में, फिल्म नमक हलाल
1: जी
0: से।

0: फोन करें। गीत सुने
1: नमस्कार,
0: जी, किन से बात हो रही है मेरी?
1: मैं ओम प्रकाश नेमा, विद्यानगर केंद्रा, जिला दमोह, मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मैडम,
0: ओम प्रकाश जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छी हैं।
0: क्या चल रहा है, कैसा मौसम है?
1: मौसम तो बदल हो रहे हैं, कहीं धूप निकल रही है, बस दुकान पर बैठे हुए हैं।
0: अच्छा, किस चीज की दुकान है आपकी?
1: हमारी कपड़े की दुकान है, बस दुकान पर बैठते हैं और अपने आपकी कार्यक्रम सुनते रहते हैं।
0: तो कौन सा गीत सुनेंगे आज कार्यक्रम में, बताएं?
1: आज हम गीत सुनेंगे, फिल्म का नाम है जवाब हम देंगे। गीत के बोल हैं, हैरान हूँ मैं आपकी इन जुल्फों को देख कर।
0: ये अनुराधा पौडवाल जी और शब्बीर कुमार की आवाज में ये गीत है
1: जी।
0: बिल्कुल, आपको सुनवाते हैं ये गीत। ओम प्रकाश जी,
1: दोस्तों के लिए
0: जी
1: डेडिकेट रहेगा। परिवार का नाम लेना चाहते हैं?
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो हमारे परिवार में श्रीमती किरण नेमा है और आकाश नेमा, विकास नेमा, नंदिनी नेमा, शुभांश नेमा, वो सारा नेमा परिवार है।
0: आपके परिवार और आपके साथियों के लिए अब आपको सुनवाते हैं ये गीत, जवाब हम देंगे फिल्म से।
1: जी,
0: बहुत बहुत
1: नमस्कार।
0: धन्यवाद, नमस्कार।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करने की
1: हेलो
0: सुने।
1: नमस्कार मैडम,
0: नमस्ते, किन से बात हो रही है
1: भूपेंद्र कुमार गुप्ता बोल रहा हूँ, कोटा राजस्थान से।
0: जी? कैसे हैं आप?
1: बस बढ़िया, आप कैसे हो?
0: मैं भी बढ़िया हूँ।
1: भोपाल में बारिश वारिश हो रही नहीं हो रही?
0: भोपाल में बारिश थोड़ी सी कम हो रही है, थोड़ी और हो जाएगी तो अच्छा लगेगा।
1: यहाँ तो गर्मी पड़ रही है। गाना
0: हाँ
1: बता दूँ? भीगी
0: हाँ बिल्कुल, गाना बता दीजिए।
1: रात का कैसे तो न देखो, सुमन
0: मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की
1: कल्याण
0: आवाज़ में।
1: लता जी की आवाज में, ऐसे तो न देखो कि बग जाए कहीं। ठीक
0: बिल्कुल, ये गीत हमारे पास उपलब्ध है। अब आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: है, धन्यवाद
0: बहुत
1: दोस्त,
0: बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में फ़ोन करने के
1: धन्यवाद।
0: लिए।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें, गीत सुने।
1: हाँ मैडम, तो सही, मैं सुमित सिंह बात कर रहा हूँ, एमपी धार से।
0: धार से सुमित सिंह जी, कैसे हैं आप?
1: जी मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ जी।
0: क्या चल रहा है धार में?
1: जी बस मेरी म्यूजिक के क्षेत्र में जॉब है, म्यूजिक कॉलेज
0: हाँ,
1: में हूँ मैं।
0: तो आप गाना सिखाते हैं या कोई वाद्य यंत्र सिखाते
1: नहीं
0: हैं?
1: मैं मेरा जो विषय है वोकल है, मैं वोकल सिखाता हूँ जी।
0: अच्छा जी, ठीक है। तो कार्यक्रम में आज गीत कौन सा सुनना चाहते हैं बताएं, संगीत कितनी
1: आप
0: बातें
1: मुझे
0: बताएं।
1: सुना दीजिए, आग और शोला फिल्म का गीत है, अनुराधा पौडवाल जी और मनोहर उदास जी की आवाज में, बरसा रे बरसा।
0: बिल्कुल, ये गीत उपलब्ध है हमारे पास, आपको सुनवा देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में फोन करने के लिए सुमित जी।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
1: हेलो,
0: जी नमस्कार।
1: कौन बोल रहे साहब?
0: जी मैं रक्षा बात कर रही हूँ।
1: मेरे को भी गाना सुनना है साहब। कौन बोल रहे आप?
0: बिल्कुल सुनवाएंगे हम आपको। आपका नाम बता दीजिए। मैं रक्षा बात कर रही हूँ।
1: जी हाँ, मेरा नाम सरला चावड़ा है।
0: सरला जी,
1: जी हाँ,
0: कहाँ से बात कर रही हैं सरला जी?
1: मैं रतलाम से।
0: रतलाम से फोन कर रही हैं, कार्यक्रम सुन रही हैं हमारा।
1: जी हाँ,
0: अच्छा ठीक है, क्या करती हैं सरला जी?
1: मैं टीचर हूँ साहब।
0: टीचर हैं। अच्छा बताएं, अब कौन सा गीत सुनना चाहती हैं बताएं।
1: मैं सुनूंगी फिल्म नमस्ते जी का, मेरे दो नैना मतवारे।
0: लता मंगेशकर जी की आवाज में ये गीत है,
1: जी हाँ, जी
0: आपको
1: हाँ।
0: सुनवा देते हैं। सरला जी बहुत अच्छी आपकी पसंद है।
1: मैं 1971 से सुन रही गाने।
0: अरे वाह,
1: मैं कक्षा कक्षा एक में थी तब से ही गाने सुन रही हूँ और मुझे सभी गाने बेहद पसंद है। और आकांक्षा दीदी और विद्या जैन और सरिता रावत जो भी है, वो जितनी भी है, उनको बहुत बहुत गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। वो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है उनकी आवाज। उन्होंने फूलों के बारे में जानकारी बताई आकांक्षा दीदी ने, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सरला जी, आपका जो इतना प्यार है मैं बिल्कुल सबके साथ साझा करूंगी
1: जी हाँ, जी हाँ, थैंक यू वेरी
0: जी।
1: मच।
0: अब आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में फोन करने के
1: जी
0: लिए।
1: हाँ, थैंक यू वेरी मच।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
1: हाँ, फोन करें गीत सुने कार्यक्रम से।
0: जी
1: हाँ, मैं जिला पन्ना मध्य से हर्षवर्धन पांडे बात कर रहा हूँ।
0: हर्षवर्धन पांडे जी, कैसे हैं आप?
1: हाँ, वो ठीक है। और इस समय भोपाल का मौसम कैसा है? बरसात वगैरह हो रही है? और पन्ना में तो नहीं हो रही है, पन्ना में तो ये जो है जो धूप निकली है। भोपाल का मौसम आप बता दीजिए।
0: हर्षवर्धन जी, पन्ना में जैसी धूप निकली है वैसी भोपाल में निकली हुई है, थोड़े बहुत बादल हो जाते हैं।
1: हाँ, वो मुझे आज वो जो है बरसात से ही संबंधित गीत सुनवा दिए। एक काला बाजार फिल्म का गीत है मोहम्मद रफी और गीता दत्त के ऊपर में, ये रिमझिम के तराने लेके आई बरसात। ये फिल्म 1960 में बनी थी और ये इसी का गीत सुनना है और संगीतकार इसके जगदीप बर्मन है। ये वाला गीत सुनवा दीजिए, काला बाजार।
0: बिल्कुल, बड़ी सुंदर गीत की फरमाइश की है आपने। कार्यक्रम में फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए, अब सुनिए आपकी पसंद का ये गीत।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें, गीत सुने।
1: हेलो।
0: हेलो
1: हाँ जी, नमस्ते मैडम जी।
0: जी, किन से बात हो रही है?
1: ये मैं विक्रम मालवी बोला ना, गुलबलो से।
0: विक्रम मालवी जी, कैसे हैं आप?
1: जी मैं बढ़िया हूँ।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं, मैं सुन नहीं सकी।
1: ये मैं मालवा रेडियो श्रोता संघ गुलबलो, तहसील आलोट, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ।
0: क्या करते हैं विक्रम जी?
1: जी मैं वेयरहाउस में काम करता हूँ मैडम जी, और इसके अलावा खेती का काम करते हैं।
0: अच्छा, खेती का काम भी करते हैं। क्या उगा रहे हैं अभी?
1: अभी सोयाबीन बोई है मैडम जी।
0: अच्छा,
1: जी
0: कार्यक्रम है, फोन करें, गीत सुने, तो कौन सा गीत सुनना
1: जी
0: चाहते हैं?
1: गीत सुनना है मुझे। फिल्म है करण अर्जुन का,
0: कौन
1: और
0: सा
1: करण
0: गीत?
1: अर्जुन का वो वाला गीत सुना दीजिए, हे माँ काली।
0: कुमार सानू की आवाज में, साथ
1: जी जी
0: है अलका याग्निक।
1: जी मैडम जी
0: बिल्कुल, आपको सुनवाते हैं। विक्रम जी, कार्यक्रम में फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
1: जी आपको भी देवो तो धन्यवाद मैडम जी।
2: खड्गम चक्र गदेषु चाप परिदान शूलं वुशुण्डे शिर शङ्खं दन्दधिं करैस्त्रिनयनं सर्वाङ्गभूषाभृताम्।

भारत अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का लगातार विस्तार कर रहा है। वर्तमान में 7 स्थानों पर 24 परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों का संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा 10 और रिएक्टर इकाइयां निर्माणाधीन हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज इंदौर के लक्ष्मी नगर अनाज मंडी परिसर में बलराम कृषि महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। कृषक कल्याण वर्ष के तहत आयोजित इस महोत्सव के दौरान किसानों को प्राकृतिक एवं जैविक खेती सहित शासन की किसान हितैषी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। बलराम कृषि महोत्सव इस माह के दौरान इंदौर के अलावा धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर और खंडवा में भी आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव आज प्रदेश की पहली अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा इंदौर से अबूधाबी की शुरुआत भी करेंगे। ये सेवा सप्ताह में 4 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को उपलब्ध रहेगी। मुख्यमंत्री इंदौर जिला चिकित्सालय के नवनिर्मित 300 बिस्तरीय भवन का लोकार्पण भी करेंगे। मंत्रिपरिषद की आगामी बैठक 19 जुलाई को भोपाल जिले के जगदीशपुर में होगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बैठक में मुख्य रूप से समान नागरिक संहिता UCC विधेयक पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि 20 से 24 जुलाई तक विधानसभा का सत्र चलेगा। इस सत्र के दौरान 14 विधेयक लाए जाएंगे। प्रदेश भर में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जा रहा है और मौसम विभाग के अनुसार आज अलीराजपुर, झाबुआ, धार, रतलाम, रीवा, मऊगंज और सतना समेत प्रदेश के 20 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबर।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को कविता रावत का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, पहली फरमाइश भेजी है महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर ने, और गांव चौहलता से संजय ढिंगिया, नमन, मुस्कान, कुणाल ने। आप सबने पसंद किया है खिलाड़ी फिल्म का ये गीत, जिसे आवाज दी है अलका याग्निक और अभिजीत ने, गीत अनवर सागर का और संगीत जतिन ललित का।

और अब सुनिए परदेस फिल्म का ये नगमा। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ें हैं, आनंद बख्शी का गीत और नदीम शेवड़ का संगीत। इस गीत को पसंद करने वाले श्रोता हैं ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम, गांव चौहलदा बागपत से संजय ढिंगिया, नमन मुस्कान कुणाल, मालवा रेडियो श्रोता संघ से प्रमिलागंज, मालवा रेडियो श्रोता संघ प्रमिलागंज आलोड जिला रतलाम से बलवंत कुमार वर्मा, राजू भाई वर्मा, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, प्रियांश और ऋषि वर्मा। आप सबकी फरमाइश पर सुनिए परदेस फिल्म का ये गीत।

और अब सुनिए, पिघलता आसमान फिल्म का ये नगमा लता मंगेशकर की आवाज में इंदिवर के लिखे गीत को सुरों में सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने। इस गीत की फरमाइश भेजी है सारनी जिला बैतूल से अमित खातरकर, निहारिका खातरकर, शिवपाल यादव, अनामिका, अवंतिका, शिवालिका, पारसमणि, पंजाब राव निम्बालकर और संदीप पाटिल, औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश ने। आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं ये गीत।

0: इसके साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम संपन्न होता है। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, सुनते हैं कुछ संदेश।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर। सुनिए आकाशवाणी भोपाल पर।

और सावधानी के साथ करें। किसी भी प्रकार की भ्रामक अफवाह फैलाने वाली, धार्मिक, सामाजिक, जातीय अथवा सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाली पोस्ट, फोटो, वीडियो, ऑडियो या संदेश का प्रसारण, साझा, लाइक, कमेंट अथवा फॉरवर्ड ना करें। किसी भी अपुष्ट या भ्रामक जानकारी को बिना सत्यापन के प्रसारित करना कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। सोशल मीडिया पर ऐसी किसी भी सामग्री का प्रचार प्रसार जिससे समाज में वैमनस्य, तनाव, भय या अशांति फैलने की संभावना हो, पूर्णतः प्रतिबंधित है। यदि किसी ग्रुप के एडमिन को इस प्रकार की सामग्री प्राप्त होती है तो उसे तत्काल हटाने एवं संबंधित सदस्य को ऐसा करने से रोकने की जिम्मेदारी भी होगी। इसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति या समुदाय के विरुद्ध घृणा, हिंसा या भेदभाव फैलाने वाले संदेशों का प्रसारण नहीं किया जाएगा। अफवाहों, फर्जी समाचारों अथवा तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने वाली सामग्री को लाइक, शेयर या फॉरवर्ड करने से भी बचें। नागरिकों से अपेक्षा है कि वे केवल प्रमाणित एवं विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही विश्वास करें। किसी भी प्रकार की संदिग्ध सूचना की जानकारी तत्काल पुलिस अथवा संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को दें। भोपाल पुलिस सभी नागरिकों से शांति, सौहार्द एवं सामाजिक सद्भाव बनाए रखने तथा जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय देने की अपील करती है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा अन्य प्रासंगिक विविध प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। संग्रहालय के अंतर्गत सुनिए धारावाहिक हंसना मनाहे का 13वां भाग।

0: हंसना मना है, हंसना मना है, हंसना मना है, हंसना मना है, हंसना मना है।
1: लीजिए दोस्तों, एक बार फिर इस नई कड़ी के साथ हाजिर है आपका अपना दोस्त रजनीकांत त्रिवेदी, राजेश मिश्रा। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं।
2: ग्रामीण अंचल में और चाहे शहर में

0: की ओर आपको ले चल रहे हैं कि स्कूल में गुरुजी ने विद्यार्थी से कहा, बेटा ये बताओ कि जब मैं घर से पैदल स्कूल जाता हूं तो मुझको 30 मिनट लगता है, आधा घंटा, और जब मैं किसी की साइकिल में जाता हूं तो मुझको 20 मिनट लगते हैं। कितना लगता है? 20 मिनट। और जब मैं स्कूटर में जाता हूं किसी की बैठकर तो मुझको 10 मिनट लगते हैं। तो बेटा मेरी उम्र बताओ कि मेरी उम्र कितनी है? एक छात्र खड़ा हुआ,
1: पांडा जी आपकी उम्र ना 50 साल।
0: देखो कितना होशियार बच्चा है। इतने बच्चों में कोई भी बच्चा ये नहीं बता पाया कि जब मैं पैदल आता हूँ स्कूल आधा घंटा, जब मैं साइकिल में आता हूँ 20 मिनट, स्कूटर में 10 मिनट, तो गुरुजी की उम्र 50 साल। ये कैसे बताओ? बताओ बच्चों, उनको बताओ कैसे निकाला तुम?
1: पंडित जी हमारे घर के बाजू में एक लड़का रहता है, उसकी उम्र 25 साल है, वो आधा पागल है।
0: गले बैठ जाओ बेवकूफ, कभी जीवन में पास नहीं होगे। दूसरी एक और बड़ी समस्या सामने आई उस गांव में कि एक बच्चे को, बाकी बच्चों को तो बहुत प्यार से नहीं बोलते थे, मारपीट करते रहते थे, किंतु एक बच्चे को ज्यादा ही प्यार करते थे। बेटा कैसे हो?
1: अच्छा पंडित जी।
0: अपनी अम्मा से बोलना पंडित जी ने राम राम पहुंचाइए, नमस्ते। ठीक है। बच्चा हमेशा जाकर अपने घर में मैसेज दे देता था कि माँ, माँ साहब ने आपको नमस्ते बोला है, राम राम पहुंचाइए। अब चूंकि बच्चा पढ़ रहा था और उनको आशय ये समझ में नहीं आता था कि ये नमस्ते का क्या आशय है, ये क्रम चलता रहा। एक दिन उनने अपने पति को बताया कि लोग अगर सुनेंगे तो बड़ा खराब लगेगा, ये नमस्ते क्यों पहुंचाते हैं इनके गुरुजी। तो एक दिन उनने पति पत्नी ने प्लान बना लिया और आपस में, और जो ही बच्चे ने गुरुजी से बोला,
1: गुरुजी प्रणाम।
0: बेटा अपनी माताजी से नमस्ते बोल दिया था?
1: हाँ बोल दिया था, माताजी के नहीं थी कि पिताजी दूसरे शहर जा रहे हैं, आपको बुलाया है।
0: माँ साहब बढ़िया खुश घर पहुंचे। घर पहुंचे इतने में किसी ने दरवाजा खटखटाया, उनके शिष्य की माँ बोली,
1: लगता है कि वो ये आ गए हैं।
0: तो क्या करना है?
1: करना कुछ नहीं, आप हमारी साड़ी पहन लो, मैं बोल दूंगी कि पड़ोस के आए हैं ये आटा पीसने, जो घर में पुरानी चक्की इसमें आटा पीसना, गेहूं पीसना है, तो वो आए हुए हैं, कोई चिंता की बात नहीं।
0: मरता क्या ना करता, माँ साहब ने जल्दी जल्दी जल्दी धोती पहन के अपना बैठ गए गेहूं पीसने के लिए। और जो ही आए उनके पापा, बात की और इशारा किया, वो चले गए। जब वो चले गए तो माँ साहब ने जल्दी से धोती उतारी, अपना भागे। भागने के बाद एक दिन बच्चे ने बोला,
1: माँ साहब, माँ पूछ रही थी बहुत दिन से आपने नमस्ते नहीं पहुंचाई है।
0: तो माँ साहब बोले, क्यों, तुम्हारे घर का आटा फिर खत्म हो गया क्या? एक डॉक्टर साहब थे और जैसा उनकी पत्नी भी डॉक्टर, पति पत्नी दोनों। एक दिन पत्नी ने शिकायत की पति से और कहने लगी,
1: सुनिए
0: क्या बात है?
1: है ना, आप हॉस्पिटल चले जाते हो ना, सामने हॉस्टल में लड़के रहते ना, दिन के 12 बजते मेरे को देखना चालू कर देते, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आप इनको मना कर सकते हैं क्या?
0: बोले हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल मना करेंगे, कोई चिंता की बात नहीं, मैं अब भी जाता हूँ। हॉस्टल पहुंचे, हॉस्टल में लड़के रहते, देखिए आप लोग यहाँ ढंग से रहिए, क्यों क्या बात है, क्या बात है, दिन के 12 बजते

0: से आप लोग मेरी पत्नी को देखना चालू कर देते, ढंग है आप लोगों का, आप लोग नौजवान हैं, अच्छी बात नहीं। बोले डॉक्टर साहब पहले अपने घर के सामने का बोर्ड अलग करिए। क्यों, क्या बात है, क्या बात है, देखिए क्या लिखा, क्या लिखा, डॉक्टर सुधा रानी, देखने का समय 12 से 2। छोटी छोटी बातें बड़ी मजेदार हो जाती हैं। मैं कभी घड़ी नहीं पहनता हूं। मेरे से किसी ने पूछा कि राजेश मिश्रा आप घड़ी क्यों नहीं पहनते, मैंने कहा मैं घड़ी इसलिए नहीं पहनता हूं कि हर आधे घंटे में हिंदुस्तान में लोग समय अपने आप बताते हैं। अब आप सोच रहे हो कैसे बताते हैं, आप कहीं विलंब से पहुंचे तो क्या यार भैया अभी आ रहे हो, 2:30 बज रहे हैं यार। ये हम और आपके बीच में अपने आप जो हास्य मिलता है, हास्य कलाकारों को वो ऐसे ही मिलता है कि हम जो बोलते हैं, आप जो बोलते हैं वही सुन रहे हैं, वही समझ रहे हैं। अब इसमें उन्होंने कहा अच्छा 2:30 बज रहा है यार, तुम गजब कर दिया, थोड़ी देर हो गया। जब काफी देर अपन बैठ जाते हैं तो फिर कोई कहेगा चलो यार भैया 3 बज गया, तो अपन को पता लग जाता 3 बज गए। काहे को अपन इतनी बड़ा वजन टांग कर चलें, और समय की कीमत अगर अपन ने समझी होती तो अपन यहाँ ये हास्य कलाकारी क्यों करते। फिर भी एक भाई साहब से मैंने पूछा कि भाई साहब कितना बजा है, कहें 10 मिनट। मैंने सोचा कि चलो भाई 10 मिनट, मैं समझ गया, अंदर ही अंदर मैं खुश हो गया कि व्यक्ति की आदत होती है कि अगर उसको कोई पहचान रहा है तो उसको बड़ा अच्छा लगता है, उसको लगता है कि मैं बहुत, मतलब मुझे ये खुशी हुई कि यार ये व्यक्ति जान गया कि मैं हास्य कलाकार हूँ, मुझे बुरा नहीं लगा। फिर थोड़ी देर बाद मैंने पूछा कि प्रोग्राम चालू होना है, भैया कितना बज गया, बोले 20 मिनट। मैंने कहा यार लगता है ये भी हास्य कलाकार होगा, हमको छेड़ने के चक्कर में है, तो मुझे फिर बुरा नहीं लगा। थोड़ी देर बाद फिर मैंने कहा अब प्रोग्राम शुरू कराया जाए, मैंने भाई साहब टाइम कितना होगा, 30 मिनट। हमने देखो यार मैं हास्य कलाकार जरूर हूँ किंतु मुझे गुस्सा भी आ जाती है, कहले क्यों क्या बात है, अरे आप लगे हो 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, बताओ ना कितने बज, कहले भाई साहब मेरी गलती नहीं है, मेरी घड़ी का छोटा कांटा टूट गया है। बड़ा कांटा भर है, वो घूम रहा है, तो मैं बता रहा हूं आपको कि 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट। मैं, आप नाराज क्यों हो रहे, ये हास्य हमारे आपके बीच में मिल जाते हैं। कभी किसी का ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसफर को अगर आप एकदम, कभी कभी ऐसा माहौल आता कि लगातार ट्रांसफर ट्रांसफर ट्रांसफर, अब उसको अगर आप अधूरी बात करते हैं तो उसमें ऐसा लगता है कि जैसे आदमी दुनिया से चला गया हो, और वो बात मैच भी करती जाती है, आप उसके घर भी बैठाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये वाकई हो गया। जैसे उन्होंने कहा काव्या राजेश मिश्रा नहीं देख रहे, वो तो गए। गए कब, लो आपको नहीं मालूम, सही में नहीं मालूम, अरे नहीं भगवान कसम बिल्कुल नहीं मालूम यार, कैसे कहा अब, अरे यार आज को समय कोई भरोसा है, है? आर्डर आ गो चले गए। अरे हमें तो पता ही नहीं था, पर घर पे माता जी वगैरह है ना, अच्छा, अब माता जी के पास पहुंचे। अब व्यक्ति इतना झूठा हो गया है कि बाहर तक तो कहो हंसता रहे, किंतु अगर किसी मरीज को देखने जाए तो सीढ़ी चढ़ते चढ़ते चेहरा बना लेगा, इतना बना लेगा कि इनसे बड़ा दुखी कोई है ही नहीं दुनिया में। किसी के यहाँ गमी में जाएगा तो बाहर तक हंसता रहेगा, घर के अंदर पहुंचते कहो गया था भैया, अरे कैसी अचानक, अरे यार भैया, अरे राम राम राम राम, कितने बच्चे हैं भैया, 2 बच्चे, ओहो हो, मिसेज, अब मिसेज क्या 2 होंगी क्या। इतने तो गंभीर मत बनो, जबरन के नाटक इतना झूठ भरे तो नहीं करोगे, एकदम पूछ बैठे कि मिसेज, अरे मिसेज भी तो एक ही होगी, चलो ये हो गया। अब यहाँ ट्रांसफर वाले उसमें आदमी बैठने गया, अब वो गया, अब देखिए संयोग बस, माता जी, हाँ बेटा आओ, कहाँ है आज, सुनो हमें तो पता ही नहीं रहा, हाँ भैया हमें भी तो खुद ही अच्छा नहीं लग रहा, भैया नहीं है तो बिल्कुल इतना खराब लग रहा,
1: अब ऐसा लग रहा खाने की इच्छा नहीं हो।

0: आता था आते ही साथ अम्मा ए अम्मा तुम्हारे लाले सिओ ले आए, तुम्हारे लाले अंगूर ले आए, आवाज है नहीं ऐसा सुना खला बिल्कुल
1: नहीं। तो अम्मा उसमें क्या कर सकते बता,
0: नहीं करने को तो अब आप लोग नेता आदमी हो कुछ कर सकते।
1: अम्मा हम लोग नेता हैं, नीचे चलती ऊपर नहीं चल पाती हम लोगों की। अब वो ऊपर में उनको ये लग रहा है कि दिल्ली की बात कर रहे हैं वो ऊपर कहने अम्मा हम लोगों की तो नीचे ही चलती है ऊपर तो चलती नहीं।
0: हाँ बेटा ऊपर की पहुंच तो बड़ी अजीब ही होती है किंतु अब चलो अब क्या करो हम इंतजार कर रहे हैं उनका।
1: अब पूरी विधा जो थी वो पूरी बदल गई। आदमी ये सोच रहा है कि वो ऊपर चले गए हैं, वो ये सोच रहे हैं कि इनका ट्रांसफर हो गया, कभी किसी के अस्पताल में देखने जाओ। ये हास्य व्यंग आपको कहीं पढ़ने नहीं मिलेगा, ये आपके समाज में मिलेगा। आप किसी को अस्पताल में देखने जाओ और मान लो वो डिस्चार्ज हो गया है, तो आपने काउंटर में पूछा भाई साहब राजेश मिश्रा, हाँ वो तो गए कब, एक घंटा पहले, अरे राम राम राम राम, ओहो हो मट्टी कब जाएगी, नहीं नहीं मरे नहीं है यार, नहीं नहीं आप बोले ना गए मतलब हॉस्पिटल से गए यार भैया। कभी आप अचानक घर में फोन करें, हेलो
0: हाँ
1: देखो यार मेरे को पासपोर्ट फोटो की जरूरत है तो मैं भेज रहा हूँ चपरासी को, उसको पासपोर्ट फोटो दे देना।
0: हाँ ठीक है।
1: अब आप इंतजार करो पासपोर्ट फोटो का, अगर आपकी पत्नी को पासपोर्ट फोटो नहीं मिलती है तो तुरंत ग्रुप फोटो में से काट के पासपोर्ट बना के भेज देती। फिर आपने फोन लगाया, हेलो तुमने क्या फोटो भेज दी यार, क्या पेपर में देना है, गमी वाला समाचार देना है क्या कि राजेश मिश्रा नहीं रहे, ये तो इस टाइप की फोटो लग रही है।
0: नहीं तो आपने बोला ना अर्जेंट चाहिए,
1: अरे इतनी अर्जेंट नहीं चाहिए थी कि तुम ग्रुप में से काट के दे दो। हम और आपके बीच में ये हास्य हमेशा मिलता रहता है, हंसना मना है किंतु आप खोजिए, आप बस में जा रहे हैं तो वहां हास्य मिल जाता है, आपके बाजू में कोई बैठा हुआ है और आप उसको लगातार देखिए, अब एक व्यक्ति एक को देखा जा रहा, अब उसको शर्म लगी कि ये व्यक्ति मुझे क्यों देख रहा, थोड़ी देर इधर उधर देखता रहा, फिर उसने कहा भाई साहब क्या हो गया, आप एक घंटे से बैठे हो मुझे लगातार देखे जा रहे हो, बात क्या? नहीं भाई साहब कोई बात नहीं, नहीं नहीं कोई बात तो क्या है कि आपका और मेरी पत्नी का चेहरा बहुत मिलता है। कहने फालतू बात नहीं करना, नहीं नहीं कहने सही बोल रहा हूँ भैया, बिल्कुल गजब बताए आपको, अब क्या बोले यार, हम एक घंटे से देख रहे हैं आपको और एक घंटे से हम मतलब क्या बोले यार, बिल्कुल डिक्टू। कहने फालतू बात नहीं करना, मैं फेंक दूंगा तुमको बाहर, समझ गए? बोल रहे हैं भाई साहब मैं फालतू नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल सिर्फ मूछों का अंतर है, नहीं तो तुम बिल्कुल हमारी औरत के समान लगते हो। तुरंत वो व्यक्ति बोला, कहले मेरी मूछे कहाँ है, कहले मेरी औरत की मूछे है ना भैया।
2: हंसना मना है,
3: हंसना मना है,
2: अरे हंसना मना है,
3: हंसना मना है,
2: कोशिश कोई लाख करे कहता रहे कि हंसना मना है मगर लोग हंसेंगे खिलखिलाएंगे। एक बात आपसे खास तौर पे कहना चाहते हैं हम कि इस कार्यक्रम का नाम है
3: हंसना मना है।
1: लीजिए हंसना मना है इस कार्यक्रम के अंतर्गत कर्फ्यू या कभी भी 144 धारा जब भी देश में किसी भी कोने में लगती है तो हर अच्छे इंसान को तकलीफ होती है और हमारे हिंदुस्तान की ये तासीर बिल्कुल नहीं है कि वो कर्फ्यू और 144 धारा पसंद कर सके, शायद कभी नहीं करेगा। खैर ये विषय अलग है, आपको उसमें भी मैं हास्य व्यंग दे रहा हूँ, इसे कहीं कोई अन्यथा ना ले कि किस प्रकार से हमें हास्य व्यंग उसमें मिल जाते हैं, दर्द में व्यंग, इसलिए हम मैसेज पहुँचाते हैं कि कभी आप तक ये बातें पहुँच जाएँ तो कर्फ्यू और दंगे फसादों से व्यक्ति दूर रहे। कर्फ्यू

0: दौरान में सबसे ज्यादा परेशानी होती है आम व्यक्ति की, और वो होती है पुलिस वालों से। लोग मुझसे पूछते हैं कि राजेश मिश्रा, हिंदुस्तान में व्यंग्य में स्टेज की दुनिया में जितना आप पुलिस वालों के लिए सुनाते हैं और हमेशा पुलिस वालों को छेड़ते हैं, आखिर क्या बात है? और मैं हर प्रोग्राम में बताता हूँ कि मेरी एक बहन की शादी धोखे से एक पुलिस इंस्पेक्टर साहब के साथ हो गई है, इसलिए तमाम पुलिस वाले हमारे जीजा होते हैं। मजाक के दौरान में मैं उल्टा सीधा जीजा लोगों को से बोल देता हूं, तो ये भी निवेदन कर लेता हूं कि मंच से वो लोग उतनी दूरी बनाए रखें। कर्फ्यू के दौरान में बहुत से लोग बाहर से आते हैं, जो लोकल लोगों को, शहर के नेताओं को, समाज सेवियों को नहीं पहचान पाते हैं। तो सबसे पहले तो जो कर्फ्यू पास मिलते हैं उसको लोग लगाते हैं और उनको सबसे पहले मोहल्ले में दिखाने निकलेंगे। कहा भाई कर्फ्यू पास मिला यार, एसपी साहब ने बुलाया था और कलेक्टर साहब ने बोला कि एकता की अपील के लिए आप लोगों को निकलना है। अब ये तो अपन बोल रहे हैं, किंतु सामने वाला सोच रहा साफ, लोगों को भी मालूम नहीं होगा एकता की अपील, पिताजी तो साथ में रहते नहीं है समाज में एकता की अपील के लिए निकलेंगे। ठीक ठीक, निकलो निकलो, आप तो निकल लो, ये वाली गली से निकलो, ये वाली तरफ बहुत ज्यादा तनाव है, जिस तरफ पुलिस थी उसी तरफ भाइयों ने भिजवा दिया। अब जो ही पहुंचे तो पुलिस ने, ए किधर, कर्फ्यू लगा हुआ? हाँ कर्फ्यू पास है। ये पास, आपने कर्फ्यू पास फाड़ दिया, आप जानते मैं कौन हूँ? वीआईपी आदमी, 2-3 लठ मारो वीआईपी इसको। अरे ए लठ मार दिया आपने, कहता अरे भाई साहब अरे कैसा कर रहे हैं मैं। पिट गए, जी हाँ ये वाला पास चलता है। पीठ में निशान आ गए आपके? हाँ पीठ में लठ के निशान आ गए। हाँ तो ये वाला पास दिखाते हुए चले जाना घर में, बता देना मैं पिट चुका हूँ, कर्फ्यू में बाहर मत निकलिए। सुबह सुबह पति पत्नी घूमने के लिए निकल पड़े, पुलिस वालों ने रोक लिया, ऐश किधर जा रहे हैं? पति बोला मॉर्निंग वॉक के लिए। मॉर्निंग वॉक कर्फ्यू में? बहुत बढ़िया, इसको जेल भेजो, ये बड़े गोल में मॉर्निंग वॉक करेगा। पत्नी बोली, साथ में पत्नी भी थी, पत्नी तुरंत बोली
1: नहीं इनको आप माफ कर दीजिए, हमने इनको मना भी किया था कि कर्फ्यू लगा हुआ है किंतु ये माने नहीं।
0: देखो पत्नी कितनी समझदार है, आदमी कितना बेवकूफ, एक लपाड़ा मारो अपने पति को। पुलिस बोल रही है कि पत्नी से कि पति को मारो, पत्नी बोली
1: नहीं हम इनको नहीं मारेंगे।
0: नहीं मारोगी तो ये जेल जाएगा, या तो एक चाटा मार दो तो घर ले जाओ, चाटा नहीं मारोगी तो हम इसको जेल भेज देंगे, आप अपने घर जाइए।
1: नहीं देखिए आप प्लीज।
0: अब पति खिसक, मार दो ना।
1: नहीं हम नहीं मारेंगे।
0: अरे लफड़ा कराओगे क्या?
1: नहीं हम नहीं मारेंगे।
0: मार दो ना, तुमसे बोल रहे हैं।
1: नहीं ना,
0: अकेले में पटकती रहोगी। कुछ लोग हमारे पास आए, बोले राजेश मिश्रा जी आपको नेता लोग भी चाहते हैं, कलाकार भी हो आप, और आपको अधिकारी भी चाहते हैं। तो मैंने कहा भैया मेरी इतनी तारीफ क्यों कर रहे हो, कर्फ्यू में क्या पिटवाना चाहते हो आप? कहने नहीं भैया ऐसा था कि आप हमारे लिए, हम लोगों के यहाँ क्या है कि लेटरिंग नहीं है घर में, हम लोग सब सुलभ शौचालय जाते हैं, तो आप एक काम करवा दीजिए, सुबह शाम का हम लोगों के लिए पास बनवा दीजिए। और एक टाइम का इमरजेंसी बनवा दीजिए। तो मैंने कहा भैया पास बनवा दें? कहले हाँ क्या है, उधर पुलिस की पॉइंट ड्यूटी लग गई है, हम लोग इधर से जाते हैं पुलिस रगेद देती है, तो आप लोग पकड़ में नहीं आते? नहीं पकड़ में तो आ सकते हैं, किंतु जो ही वो पुलिस पास में आती है हम लोग दौड़ते हैं और वो पीछे भागते, जो ही वो पास में आते हैं तो वो फिसल जाते हैं। अरे मैंने कहा भाई साहब आपकी व्यवस्था जल्दी करें, नहीं तो मैं भी फिसल जाऊंगा। उन व्यक्तियों की समस्या हल नहीं हुई, उनमें से एक बेचारा सुबह सुबह नाली में बाहर बैठे हुआ था। सुनने में आपको जरूर अजीब लग रहा होगा, किंतु

0: जब आप पूरी बात ये सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये कर्फ्यू, दंगे फजाद, इसमें आम गरीब आदमी कितना परेशान होता है कि वो बाहर नाली में बैठे ही था कि पुलिस आ गई।
1: तेरे मालूम नहीं है कर्फ्यू लगा है?
0: साहब हमको क्या मालूम, इसमें भी कर्फ्यू लगा। बहस कर रहा है, मारो इसको लट, मारो इसको लट, उठो मार डालो साहब, अबे तो ना उठे।
1: जो ही व्यक्ति फुर्सत हुआ पुलिस ने कहा चलो कहने कपड़े पहन के आ जाएं। अपने यहां का आदमी बड़ा होशियार, ऊपर चला गया, नीचे पुलिस ने दरवाजा खटखटाया, ऊपर से झांका, क्या बात है, नीचे उतरो। नीचे नहीं उतरते, क्यों? नीचे कर्फ्यू लगा है।
2: और अब एक और हंसोड़, विनय चैन।
3: एक ऐसा आइटम सुनाने जा रहा हूं जो कि व्यंग है। एक नेताजी जिनका की तगिया कलाम था, बात बात में कहा करते थे कि राजनीति हो गई। हर बात में वो कहा करते थे कि अरे साहब राजनीति हो गई। एक बार आप तमाम लोग भी जान लें, स्वर्ग और नरक में जाने के लिए इंटरव्यू लिया जाता है। जो लोग हम और आप अपनी अपनी जीवन लीला समाप्त करके ऊपर पहुंचते हैं, तो जो इंटरव्यू में पास होता है वो स्वर्ग में जाता है, जो फेल होता है वो नरक में जाता है। और जो इंटरव्यू लिया जाता है उसमें जो नेताजी हैं उनका नंबर 2-3 लोगों के बाद आने वाला है। इंटरव्यू चालू है, सबसे पहले पहले कैंडिडेट को बुलाया गया, इंटरव्यू चालू है। कैंडिडेट नंबर 1, नमस्ते साहब, कहाँ से आए?
4: साहब इंडिया से आए हैं।
3: हाँ इंडिया से आए हो, इंडिया की स्पेलिंग जानते हो?
4: साहब आई पहले आता है, फिर एन आता है, फिर डी आता है, फिर आई आता है, फिर ए आता है, INDIA, मतलब इंडिया।
3: बड़े शाबाश, स्वर्ग में जाओ।
4: दूसरे को बुलाया,
3: हाँ साहब कहाँ से?
4: फ्रॉम जापान।
3: जापान की स्पेलिंग जानते हो?
4: साहब JAPAN।
3: बड़े शाबाश, तुम भी स्वर्ग में जाओ। जैसे ही नेताजी का नंबर आया, चित्रगुप्त साहब ने फौरन सवाल किया,
4: बोले भैया तुम चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग बताओ।
3: अब चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग नेताजी मिस्टेक कर गए, बोले नरक में जाओ। नेताजी फौरन चिल्लाए, गुरु राजनीति हो गई, सबसे सरल पूछे, हमसे बस कठिन पूछे, इंटरव्यू एक बार फिर से होना चाहिए, नहीं तो हम जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगवा देंगे। एक बार फिर से इंटरव्यू दोबारा करवाया गया, एक बार फिर से इंडिया वाले को बुलाया गया और पूछा गया, हाँ बोले साहब एक बात बताइए, ये दक्षिण अफ्रीका में सबसे बड़ा भूकंप कब आया था? बोले साहब दक्षिण अफ्रीका में सबसे बड़ा भूकंप सन 1903 में आया था। बोले शाबाश, आप स्वर्ग में जाइए। दूसरे को बुलाया जापान वाले को, बोले साहब आप बताइए दक्षिण अफ्रीका के भूकंप में कितने लोग लगभग मारे गए थे? बोले साहब लगभग 19,998 लोग मारे गए थे। बोले शाबाश, आप भी स्वर्ग में जाओ। जैसे ही नेताजी का नंबर आया तो फौरन से सवाल किया गया, बोले साहब दक्षिण अफ्रीका के इस भूकंप में और ज्वालामुखी के फटने में जितने लोग मारे गए थे सबका नाम बताओ। नेताजी वहां भी मिस्टेक कर गए, बोले साहब नरक में जाओ। नेताजी फिर चिल्लाए कि गुरु राजनीति हो गई, साहब पॉलिटिक्स हो गई, सबसे सरल पूछा जाता है, हमसे ही कठिन सवाल किया जाता है, तो इसके लिए एक बार फिर से जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लग गए। लोगों ने यह तय किया कि साहब ठीक है इंटरव्यू फिर से होना चाहिए, लेकिन इस बार ऊपर से आदेश हो गया कि इस बार इंटरव्यू आखिरी होगा, बिल्कुल अंतिम होगा, फाइनल होगा और लिखित में होगा। राइटिंग में एग्जाम होगा, जो सही लिख के बताएगा वो स्वर्ग में जाएगा, जो गलत लिखेगा वो नरक में जाएगा, इसके बाद कोई इंटरव्यू नहीं होगा। नेताजी कहने लगे, हाउ? इंडिया वाले को बुलाया, बोले साहब लिख के बताइए, कौवा काव काव, कौवा काव काव। बोले शाबाश, स्वर्ग में जाओ। जापान वाले को बुलाया, बोले साहब लिखिए बिल्ली म्याऊं म्याऊं, बिल्ली म्याऊं म्याऊं। बोले शाबाश, बिल्कुल सही लिखा है, आप भी स्वर्ग में जाइए। जैसे ही नेताजी का नंबर आया, नेताजी को देखते ही से फौरन सवाल किया, बोले साहब आप लिखिए घोड़ा।
5: हाँ तो दोस्तों, हंसने हंसाने का यह सिलसिला अभी आगे जारी रहेगा, मगर आज यहीं आपसे इजाजत मांगता है आपका अपना दोस्त रजनीकांत त्रिवेदी।

0: अभी आप सुन रहे थे संग्रहालय के अंतर्गत धारावाहिक हस्तामना है की 13वीं कड़ी। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 12:58 हुए हैं। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को पंजाब जाएंगे। इस दौरान वे जालंधर कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे और अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्निर्मित 74 अन्य रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री संत रविदास एक्सप्रेस को भी रवाना करेंगे। ये रेलगाड़ी अमृतसर को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से जोड़ेगी। भारत अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का लगातार विस्तार कर रहा है। वर्तमान में 7 स्थानों पर 24 परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों का संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा 10 और रिएक्टर इकाइयां निर्माणाधीन हैं। उद्योग जगत ने भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते को ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया है। फिक्की के महासचिव अनंत स्वरूप ने कहा है कि यह समझौता वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी बढ़ाने और नवाचार आधारित विकास को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बलराम कृषि महोत्सव इस माह के दौरान इंदौर के अलावा धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर और खंडवा में भी आयोजित किया जाएगा। मंत्रिपरिषद की आगामी बैठक 19 जुलाई को भोपाल जिले के जगदीशपुर में होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि बैठक में मुख्य रूप से समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि 20 से 24 जुलाई तक विधानसभा सत्र चलेगा। सत्र के दौरान 14 विधेयक लाए जाएंगे। प्रदेश भर में नशे से दूरी है जरूरी 2.2 जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान में विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जा रहा है और मौसम विभाग के अनुसार आज अलीराजपुर, झाबुआ, धार, रतलाम, रीवा, मऊकंज, सतना समेत 20 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। एक बच्चों का है, लीजिए सुनिए महिला कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति है।

कार्यक्रम महिला सभा सुन रही सभी सखियों को सुनीता पाठक का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, हमारे देश का युवा हमारे देश का भविष्य है। नई सोच, नवाचार, नई ऊर्जा के साथ युवा शक्ति देश में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है, और इसलिए युवाओं को नवाचार की ओर प्रेरित करने के लिए उन्हें सुरक्षित माहौल, सही मार्गदर्शन और समस्याओं को नए नजरिए से देखने की स्वतंत्रता देना बेहद जरूरी है। उन्हें लीक से हटकर सोचने और वास्तविक दुनिया की चुनौतियों के समाधान खोजने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। घर परिवार में युवाओं को हर बात पर क्यों और कैसे ये पूछने के लिए हमें प्रेरित करना चाहिए। उनकी जिज्ञासा ही नए विचारों और आविष्कारों की नींव बनाती है। हमें बच्चों को समझाना चाहिए कि असफलता नवाचार की प्रक्रिया का एक सामान्य हिस्सा है। हर गलती एक नया अनुभव और सीखने का अवसर प्रदान करती है। बच्चों को

लिखने के बजाय उन्हें वास्तविक जीवन की समस्याओं पर काम करने का मौका दें। सखियों, एक ऐसा माहौल बनाएं जहां उनके सभी विचारों का सम्मान हो, भले ही वे कितने भी अलग क्यों न हों। विचारों के मुक्त आदान प्रदान से ही नवाचार को बढ़ावा मिलता है। सखियों, युवाओं को अपने क्षेत्र के सफल उद्यमियों, वैज्ञानिकों और नव प्रवर्तकों से जुड़ने के लिए हमें प्रेरित करना चाहिए। उनके अनुभव युवाओं को सही दिशा दिखाने में मदद करते हैं। उन्हें भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही पहलों जैसे स्टार्टअप इंडिया और अटल इनोवेशन मिशन के बारे में भी जानकारी दें, जो उन्हें अपने विचारों को एक व्यवहारिक व्यवसाय में बदलने के लिए वित्तीय सहायता और मंच प्रदान करती हैं। स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसी पहलों ने देश के युवाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर युवा अब नेतृत्व कर रहे हैं। शिक्षा, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण संरक्षण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अपने समर्पित प्रयासों से नए आयाम स्थापित कर सोच को साकार करने में युवा शक्ति हमारी जो है ना वो साधुवाद की पात्र है। निरंतर प्रगति के अवसर प्राप्त कर सोपान चढ़ती युवा पीढ़ी हमें आश्वस्त कर रही है कि सुखद बदलाव की ताजगी निरंतर बनी रहेगी।

0: आ और भी हमें बहुत की लगती है वो है कहानी। जी हाँ, हम आपके मन की बात को जानते हैं, इसलिए आज एक कहानी लेकर आए हैं। कहानीकार हैं डॉक्टर चारुचित्रा। कहानी है बोनसाई की बगावत। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर चारुचित्रा से उनकी ये कहानी।
1: शालिनी ने बड़े आदमकद शीशे में अपने आप को देखा। उसे लगा कोई और ही उसके सामने खड़ा है। आजकल अपने आप को पहचानने में भी उसे मेहनत करनी पड़ती है। उसका गेहूं रंग सफेद हो चुका था, ऐसे ही जैसे दीवारों का पुराना पेंट कई परतों के बाद आखिरकार नए रंग में रंग ही जाता है। राज ने दो दिन पहले आके पार्लर में सब तय कर दिया था। कैटलॉग में वो उंगली रखते गए थे और राज की पसंद के हिसाब से शालिनी संवार दी गई। शालिनी को अपने घर में रखी नृत्य मुद्रा में एक हथेली ऊपर कंधे के पास और दूसरी कूल्हे के पास रखे वो गुड़िया याद आ गई, जिसे कोई भी आता जाता छू देता और वो कमर और गर्दन को हिलाकर नाचना शुरू कर देता। दरवाजे से बाहर कदम निकालते ही हल्की चिनमिन सी बारिश की फुहार को चेहरा उठाकर उसने छूने की कोशिश की ही थी कि तभी ड्राइवर ने छाते को उसके सिर पर तानकर फुहार की नाजायज गुस्ताखी पर वहीं रोक लगा दी। उसे छूने का हक सिर्फ सिर्फ राज को था, यहाँ तक कि पापा मम्मी भाई और छुटकी भी शादी के बाद उसे जोर से गले लगाने से हिचकिचाने लगे। एक शादी में शालिनी को देखने के बाद जब राज ने घर आकर उसका हाथ मांगा तो जैसे सब कृतार्थ हो उठे थे। सभी हैरान थे कि राज ने इस घर परिवार और शालिनी में ऐसा क्या देख लिया जो उसका दीवाना हो गया। राज ने शादी की पहली रात ही अपने पिछले कड़वे अनुभवों का जिक्र करते हुए स्पष्ट कर दिया था कि अब उसे एक साधारण परिवार की घरेलू ठीक ठाक सी लड़की चाहिए जो उसके कद और ओहदे को समझ सके और उसके सर पर नाच ना सके। शालिनी की छोटी सी झोली जिसमें बड़े बड़े सपने लेकर वह आई थी एकदम ही खाली हो गई। राज उसके परिवार की उम्मीद पर पूरी तरह खरा उतरा। आर्थिक कठिनाई झेलने वाले भाई को उसने अपने साथ बिजनेस में जोड़ लिया। शालिनी को बिना किसी व्यवधान के कॉलेज जाए बिना ही एमए की डिग्री मिल गई। पापा की लंबी बीमारी का अच्छा इलाज भी होने लग गया। एक ही काम रह गया था, छुटकी के लिए अच्छा परिवार और वर ढूंढने का। राज ने वो खोज भी शुरू कर दी थी। राज ठंडी बयार की तरह परिवार के हर सदस्य को सुकून दे रहा था, लेकिन ऐसा क्या था कि अजीब सूखापन शालिनी के आसपास घिर गया था, जैसे सब कुछ खिंचा भिचा सा हो। तरलता को तरस गई थी वह। कहा था शालिनी ने एक दिन पापा मम्मी से, मेरा मन नहीं लगा यहाँ, मुझे अपने घर वापस आना है। मम्मी ने घबराते हुए उसके हाथ को दबाया कि कहीं आवाज गलती से भी किसी तक पहुँच ना जाए। क्या कह रही है, क्या परेशानी हो सकती है तुझे यहाँ, इतना बड़ा बंगला, कारें, गहने, कपड़े, नौकर चाकर, कितना ध्यान रखता है राज तेरा, अफरात में जब मिल जाए तो भी दिमाग खराब ही हो जाता है। माँ दांत भीजते हुए बोली। मैं कारपेट नहीं हूँ जो बिछती रहूँ मैं इंसान, वाक्य पूरा भी नहीं कर पाई थी कि पापा भी मम्मी का साथ देते हुए बोले, बेटा जी मैं नहीं समझ पा रहा कि तुम्हें यहाँ क्या तकलीफ है। राज तुम्हें मारता पीटता है, बहुत ज्यादा शराब पीता है, ड्रग्स लेता है, कोई और है उसकी जिंदगी में, बोलो। शालिनी एक टक देखती रही पापा को, कहती भी तो क्या कह। बेटा जीवन एडजस्टमेंट का नाम है, शादी को समय ही कितना हुआ है अभी, वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है। तुम इतने साधारण परिवार से आई हो, वह भी तो तुम्हारे साथ एडजस्ट करता होगा। मानता हूँ थोड़ा डोमिनेटिंग है राज, लेकिन इतनी कम उम्र में क्या क्या नहीं कर लिया उसने। पापा थोड़े फिर रुके, कहा तू ना कहती थी कि मैं इस घर का बड़ा बेटा हूँ, संभाल लूंगी सबको, अब इस परिवार का भविष्य तेरे साथ ही जुड़ा है बेटा। घर के सामने कार रुकने के साथ ही शालिनी के भागते मन पर भी रोक लग गई। खिली धूप में लॉन की चमकती मुलायम मैक्सिकन कारपेट, घास, आसपास करीने से क्यारियों में लगे देश विदेश से आए पौधे, सफेद मेजपोशों से सजी गोल मेजें, लाल रंग के रिबन बांधे अतिथियों के स्वागत को आतुर कुर्सियां, शहर के मशहूर गायक

की कव्वाली पर झूमते ढाके लगाते रसूखदार पुरुष और महिलाएं। राज वेलकम वेलकम करता हुआ फोटोग्राफर के साथ तेजी से आगे बढ़ा। पोर्च में एक तरफ खड़े मम्मी पापा और भाई भी उत्साह से उसकी आगवानी को आगे आए तो राज की एक दृष्टि से उनके बड़े कदम सहम गए। अब क्या चीज कैसे प्रस्तुत करनी है ये राज को हमेशा पता होता है। यंग एंटरप्रेन्योर का पुरस्कार यूं ही तो नहीं मिल गया था उसे। सबके सामने उसके हाथों को पकड़ता हुआ वह कह उठा, बेबी बहुत खूबसूरत लग रही। फिर धीरे से उसके कानों के पास आकर बेहद कड़े स्वर में वैसे ही मुस्कुराते हुए बोला, ये पल्ला क्यों लपेट रखा है, साड़ी का लुक ही नहीं आ रहा ढंग से। उधर से किसी की आवाज आई, नॉटी बॉय, ये क्या कानाफूसी चल रही है राज। इतने में मंत्री जी की कार के रुकते ही राज के साथ शालिनी भी उनके पैर छूने को झुकी तो मंत्री जी ने इत्मीनान से उसकी अनावृत पीठ पर ऊपर से नीचे तक हाथ फिराकर कुछ ज्यादा ही लंबा आशीर्वाद दे डाला। राज ने देखकर भी अनदेखा कर दिया और वो एक गिजगिजे जानवर को पूरी दोपहर पीठ पर लिए घूमती रही। राज और शालिनी की शादी की दूसरी एनिवर्सरी का केक कटा और राज ने ग्लास पर चम्मच बजाते हुए सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। बेहद रोमांटिक अंदाज में शालिनी की ओर देखकर बोला, अपनी मल्लिका की नाजुक गर्दन के लिए एक छोटा सा तोहफा इस गुलाम की ओर से। उसके साथ ही शालिनी की गर्दन हीरो जड़े हार से सज गई। जोर से तालियां बजी और टू क्यूट, व्हाट अ लकी गर्ल, प्रेशियस, सो स्वीट, ट्रूली ब्लेस जैसी आवाजें हवा में उछलने लगी। लेकिन इस सुख को शालिनी जी ही नहीं पा रही थी। यादों के बवंडर में उलझी हुई थी वो। दो सालों में पहली बार उसने राज से कोई तोहफा मांगा था। बड़े ही रोमांटिक अंदाज में, क्या चाहिए तुम्हें, कहते हुए राज ने उसे सीने से लगा लिया। राज, मैं कोचिंग करना चाहती हूँ, यूपीएससी का इम्तिहान देना चाहती हूँ। राज ने सीने से लगी शालिनी को थोड़ा पीछे करते हुए बोला, क्या रखा है इस सब में, पढ़ पढ़ कर अपना दिमाग खराब करोगी। तुम हैसियत नहीं देखती अपने पति की, छोटी सी बात पर मंत्री आकर खड़े हो जाते हैं घर में। फिर उसके उतरे चेहरे को देख राज ने खुद ही रास्ता निकाल लिया। अच्छा, तुम्हारा घर से बाहर निकलने का मन है ना, तो तुम समाज

0: आमंत्रण स्वीकार किया, वो भी फोन पर। कृतज्ञ हूँ मैं, आप नहीं जानते कितनी बड़ी प्रशंसक हूँ मैं आपकी। जाने कितने दिनों बाद वो अपने अंदर से फिर अपनी पुरानी शालिनी को खोज लाई थी। अपनी ही रॉ में किलकती शालिनी शेखर को राज से मिलवाने को आगे बढ़ी। राज ये हिंदी के प्रसिद्ध कवि हैं। शेखर, इन्हें सुनने तो कॉलेज भी बंक करके मैं पहुंच जाती थी। ये सारे शब्द शालिनी के मन के अंदर ही रह गए। तब तक एक्सक्यूज मी कहता हुआ राज आगे बढ़ा और मुड़कर शालिनी को इशारे से बुलाया। राज की शिष्टता और मुस्कुराहट बरकरार थी, मगर क्रूर हुए थे तो वे थे उसके शब्द। उसने आहिस्ता से शालिनी को कहा, इसको किसने बुलाया है? शालिनी ने अधिकार से कहा, मैंने। मुस्कुराहट और शिष्टता पर तमतमाहट का आवरण पल भर को चढ़ा और फिर उसी रूप में वापस आकर राज बोला, रफा दफा करो उसे, कहीं से फिट हो रहा है वह इस पार्टी में? रुआंसी हो उठी शालिनी, लेकिन ऐसे कैसे? जैसे बुलाया है वैसे ही वापस भेजो और चेहरे की मुर्दानगी खत्म करो। कहते हुए राज की तमतमाहट पर शिष्टता का मुलम्मा फिर चढ़ चुका था। शालिनी ने रंगीन कागज में लिपटी किताब को मेज पर देखा और आंसुओं से धुंधली आंखों ने शेखर की अनुपस्थिति को भी महसूस कर लिया। शालिनी अपने अंतर्द्वंद से उबर भी नहीं पाई थी कि तभी राज की आवाज सुनाई दी। क्या कर रही हो? आओ जान, तुम्हारे बिना अधूरा हूँ मैं। पलों में भाव भंगिमा मूड बदल लेने की राज की है कला आज 2 बरस बाद भी शालिनी को अचंभित कर उठती है। राज लॉन में अपने पसंदीदा हिस्से में खड़ा था, जहाँ जब तब दस्ताने चढ़ा कैंची कटर तांबे की तारें लेकर कई तरह के खेल और प्रयोग वह पौधों पर किया करता है और छोटे पेड़ों की एक दुनिया उसने वहाँ बसा ली है। छोटे छोटे बरगद, पाइन, जापानी लाल मेपल, जूनिपर, चीनी एल्म, फिकस, एडीनियम, यही नहीं संतरे, नारंगी, अमरूद से लदे फदे मिनिएचर्स जाने कितने ही विराट पेड़ों के घमंड को तोड़ते थे। लोग मंत्रमुग्ध थे राज की इस कला पर और राज किसी विशेषज्ञ की तरह बड़े ही मनोयोग से सबको बोनजाई बनाने की बारीकियां समझा रहा था कि तभी सिन्हा साहब की आवाज ने व्यवधान डाल दिया। तांबे की तारों से लिपटे एक बोनजाई को सबको दिखाते हुए बोले, क्यों राज, तुम्हें नहीं लगता कि ये प्रकृति के खिलाफ है? किसी की भी नेचुरल ग्रोथ को ऐसे क्यों रोकना है? टॉर्चर कर रहे हो तुम इनके साथ। इन्हें तारों से बांधना, काटना, फैलने से रोकना, बरगद पीपल जैसे विशाल पेड़ों को जरा सी ट्रे भर जगह देते हो। उन्हें प्राकृतिक रूप से बढ़ने दो भाई। राज को विरोध पसंद नहीं है, अपने को जज्ब करता हुआ बोला, अरे साहब क्या कहते हैं, इटली के बोनजाई म्यूजियम में 1000 साल पुराना पेड़ रखा है। टोक्यो के इंपीरियल पैलेस में 17वीं शताब्दी का बोनजाई देख तो मैं दीवाना हो गया। जब इतनी लंबी उम्र तक जीते हैं, बाकायदा उसी तरह फल फूल देते हैं जैसे दूसरे पेड़ देते हैं, खूबसूरती तो देखिए इनकी, तो कैसे आप दावा करते हैं कि इनके साथ टॉर्चर हो रहा है? बस तकनीक का कमाल है, ग्राफ्टिंग और प्रूनिंग सही होनी चाहिए। हाँ, तारों से बांधने में कुछ छुटपुट निशान पड़ जाते हैं, एस्थेटिकली जरा अच्छे नहीं लगते, तो उनके भी तरीके हैं ठीक करने के। सौंदर्य सिर्फ खजुराहो अजंता एलोरा की मूर्तियों और पेंटिंग्स में नहीं है जनाब, इस कटाई छटाई और उससे उपजे बौनेपन में भी एक परिष्कृत सौंदर्य शास्त्र है। बहुत देर से चुप खड़ी शालिनी एकदम चुनौती दे बैठी, इतनी मेहनत के बाद भी अगर कोई बोनजाई अपने कद से आगे बढ़ गया तो? उसने बगावत कर दी तो? आकार और कद ना बढ़ने देने का ही तो सारा मसला है जाने मन, इतनी काट छांट के बाद या तो बोना रह जाएगा या मर जाएगा। कहते कहते राज मुस्कुराकर फोटोग्राफर को पोज देने को तैयार हो गया।
1: सखियों, अभी आप सुन रही थी ये कहानी बोनजाई की बगावत, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। कहानीकार थी डॉक्टर चारू चित्रा। सखियों, देश के जिम्मेदार नागरिक के तौर पर हमने अपने अधिकारों और कर्तव्यों की केवल जानकारी ही नहीं होनी चाहिए बल्कि इनके प्रति जागरूकता और पालन भी जरूरी है। जब तक एक भी महिला अपने हक से अनजान है तब तक हमारा समाज आधा अधूरा है। सखियों, हम आपको कभी भी लौट जाओ नहीं कहेंगे, हम तो हमेशा आगे बढ़ने के लिए ही प्रेरित करेंगे और आगे बढ़ने का पहला कदम है अपना हक जानना, क्योंकि जो अधिकार हमें पता ही नहीं उसे पाने के लिए हम संघर्ष कैसे करेंगे भला। घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 घरेलू हिंसा के खिलाफ 1091 पर फोन करना, महिला थाने जाना, और ये सब महिलाओं का अधिकार है। सन 2005 के बाद पिता की संपत्ति में बेटी बेटे का समान अधिकार है। परिवार में पति से संबंध बिगड़ने पर गुजारा भत्ता मांगने का भी अधिकार है। ऑफिस में यदि कोई गलत कमेंट, घूरने और छूने की कोशिश करता है तो ये अपराध है। हर ऑफिस में आंतरिक समिति का गठन जरूरी है जो शिकायत मिलने पर 90 दिन में जांच पूरी कर दोषी को सजा देने के लिए प्रस्तावित करती है। यह अधिकार कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के